रावण द्वारा सीता हरण की जानकारी मिलने पर दोनों भाई ऋष्यमूक पर्वत के समीप पहुंचते हैं, जहां हनुमान जी से भेंट होती है। हनुमान जी दोनों भाइयों को सुग्रीव, जामवंत और समस्त वानरी सेना से मिलवाते हैं। श्री राम अपने आने का प्रयोजन बताते हैं। श्री राम की शरण में आए हुए सुग्रीव अपनी वानरी सेना को माता सीता की खोज के आदेश देते हैं, परंतु सागर को लांघकर लंका जाना ये कार्य तो केवल हनुमान जी ही कर सकते हैं। जामवंत, अंगद और वानरी सेना हनुमान जी को जागृत करते हैं।

श्रोताओं, इस भजन के साथ ही हमारा आज का ये आराधना कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर हाजिर होंगे कार्यक्रम लेकर ठीक सुबह के 5:05।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 22वीं तिथि, तदनुसार 12 मई 2026 सुबह के 5:53:40 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश।

0: टू सोल्जर्स में हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है। 6 बजने वाले हैं अब समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के दो तथा असम गण परिषद और बोडो पीपल्स फ्रंट के एक एक मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध विराम सबसे कमजोर स्थिति में और लाइफ सपोर्ट पर है। और बांग्लादेश ने भारत में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि LPG वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग पर बल दिया है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे

0: एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
1: रसायन और उर्वरक मंत्रालय में अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में खरीफ सीजन के लिए 51% से अधिक उर्वरक भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 97,00,000 मीट्रिक टन उर्वरक का अतिरिक्त प्रबंधन किया गया है। संवाददाता सम्मेलन में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सभी भारतीय जहाज सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास समय से सहायता उपलब्ध कराने के लिए लगातार हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया को बताया कि भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारत ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है। मंत्रालय ने बताया कि तेहरान में भारतीय दूतावास ने 2,500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में मदद की है। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। वे राज्य में उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। एक रिपोर्ट।
2: डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा के साथ आज 4 अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। जिन 4 कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी उनमें रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नियोग शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई केंद्रीय मंत्री तथा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान को शपथ ग्रहण समारोह के लिए पूरी तरह सजाया गया है। वहीं कामरूप मेट्रो जिला प्रशासन ने शहर के विभिन्न हिस्सों में यातायात सुचारू बनाए रखने और जाम से बचने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलु मणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों की एक समूह ने इडपड्डी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
4: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती
3: है। NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। एक रिपोर्ट।
7: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ उद्योग जगत के प्रमुखों को संबोधित

0: करेंगे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल कृषि बदलाव के स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत पहल का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इससे लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
2: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
1: इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि ये पहल स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सरकार की सक्रियता दर्शाती है।
3: हम जानते हैं कि हम लोगों ने एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस किया है, और जब हम ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस की बात करते हैं तो हमने हेल्थ सिस्टम्स को भी काफी स्ट्रेंथन किया है। और हमारी कोशिश क्या है कि हम एक्सपैंड करें अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी के हेल्थ, और जो हमारा फोकस है वो फोकस है प्रिवेंशन पर, अर्ली डिटेक्शन पर और कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर पर।
1: सेहत पहल का उद्देश्य स्वस्थ भारत के लिए कृषि, पोषण और वैज्ञानिक नवाचार को मजबूत करना है। खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी की जाएगी। खान मंत्रालय ने इन खंडों को संयुक्त राष्ट्र संसाधन वर्गीकरण प्रणाली के 3 और 4 अन्वेषण चरणों के अंतर्गत रखा है। मंत्रालय ने कहा कि संसाधन सीमेंट निर्माण और अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी। अमरीका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। अमरीका ने ईरान के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमरीकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज पर संपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हुर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। एक रिपोर्ट।
4: ईरान की मांगे मुख्य रूप से युद्धकालीन परिस्थितियों और आर्थिक दबावों पर केंद्रित रही है, न कि तत्काल परमाणु रियायतों पर। लेकिन फिलहाल अमेरिका इन मांगों को मानने के पक्ष में नहीं है। मध्यस्थ लगातार साझा समाधान खोजने की कोशिश में है, लेकिन युद्ध के दबाव और आर्थिक संकट के कारण स्थिति और जटिल होती जा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात बुनियादी ढांचों पर हुए हमलों पर अपनी प्रतिक्रिया तय कर रहा है। उसने एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है जिसका उद्देश्य देश पर 2800 से अधिक ड्रोन और मिसाइल हमलों से हुए नुकसान का दस्तावेजीकरण करना है। संयुक्त अरब अमीरात अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी जवाबदेह तय करने और अपने प्रमुख स्थलों तथा ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों के लिए मुआवजे की मांग करने की तैयारी कर रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: बांग्लादेश क्रिकेट टीम के भारत में आईसीसी T20 विश्व कप से हटने के कारणों की जांच के लिए 3 सदस्यों की जांच समिति गठित की गई है। एक रिपोर्ट।
5: इस साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हुई T20 विश्व कप से बांग्लादेश ने अपना नाम वापस ले लिया था। यह फैसला तब लिया गया जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश के मैच भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने की मांग को ठुकरा दी। विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कथित तौर पर कट्टरपंथी समूहों से धमकियों के बाद बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को IPL से बाहर कर दिया। हालांकि ICC ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है, लेकिन इसके बाद अंतरिम सरकार ने BCB को टूर्नामेंट से हटने का निर्देश दिया। नवलसन परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सर फिरोजी।
6: धन्यवाद मुकेश।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी मुद्रा बचाने की सलाह सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी

0: बोले, ऑनलाइन कक्षाओं और काम को प्राथमिकता दें, कोरोना महामारी की तरह इस संकट से भी बाहर निकल आएंगे। पत्र के अनुसार सरकार ने कहा, परेशान ना हो, देश में पर्याप्त पेट्रोल और डीजल उपलब्ध। जनसत्ता के अनुसार पोखरण परीक्षण की याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कोरोना सदी का सबसे बड़ा संकट था, जंग दशक के बड़े संकटों में से एक। नवभारत टाइम्स इसी खबर पर ऊर्जा में आत्मनिर्भरता शीर्षक से संपादकीय में लिखता है, पीएम नरेंद्र मोदी के बाद सोमवार को पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय ने भी लोगों से सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करने की अपील की, ताकि पेट्रोल डीजल की खपत कम की जा सके। हालांकि सरकार ने यह भरोसा दिया है कि देश में ईंधन की कमी नहीं है। वीर अर्जुन का शीर्षक है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताकर खारिज किया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बंगाल सरकार का फैसला, सीमा पर बाढ़ के लिए 45 दिन के भीतर देगी जमीन।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के दो तथा असम गण परिषद और बोडो पीपल्स फ्रंट के एक एक मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगरपालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। और बांग्लादेश ने भारत में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges people to save fuel and reduce use of foreign products in a bid to save forex amid West Asia crisis. Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma to be sworn in as Chief Minister of Assam in Guwahati today. Four ministers, two from BJP and one each from AGP and BPF to also take oath. EDRS former West Bengal Minister Sujit Basu in connection with South Damdam Municipality Recruitment Scam. Prime Minister Narendra Modi to be on a 6-day visit to UAE, Netherlands, Sweden and Norway and Italy beginning Friday. US President Donald Trump says ceasefire with Iran is at its weakest and on massive life support. And Bangladesh forms committee to probe reason behind national cricket team's withdrawal from ICC Men's T20 World Cup in India. Prime Minister Narendra Modi has urged people to save fuel and reduce the use of foreign products to save foreign exchange amid West Asia crisis. Addressing a function in Vadodara, Gujarat yesterday evening, Mr. Modi reiterated his earlier appeal to revive COVID-era methods such as work from home, online classes, virtual meetings and reduced consumption of petrol and diesel, stressing on the need for collective efforts to reduce imports and help the country navigate the crisis. Prime Minister said there is a need for all of us to come together and fulfill our responsibility to reduce the burden on the country's resources.
3: आज समय की मांग है कि हम वोकल फॉर लोकल को एक जन आंदोलन बनाएं, विदेशी सामान की जगह लोकल उत्पादों को अपनाएं, अपने गांव, अपने शहर, अपने देश के उद्यमियों को हम ताकत दें। विदेश में वेडिंग इनका फैशन खूब बढ़ रहा है और लेकिन इस पर भी बहुत विदेशी मुद्रा खर्च होती है। जरूरी है कि भारत में ही अपनी वैकेशन मनाएं और वेडिंग के लिए भी मैं नहीं मानता हूं कि भारत से अधिक कोई अच्छी पवित्र जगह हो सकती है।
2: Prime Minister said that India spends lakhs of crores of rupees in foreign exchange to import many products from abroad, and the crisis has led to steep rise in imported goods and severely disrupted global supply chains. Mr. Modi said that his government is working to ensure the impact of the crisis on Indians is minimal.
3: सरकार भी लगातार ये प्रयास कर रही है कि देश के सामान्य नागरिक पर इन सारी विपरीत परिस्थितियों का कम से कम असर हो, लेकिन ऐसे समय में देश को

0: आज हम आपको ढोकले के साथ साथ पुदीने की चटनी भी बनाना सिखाएंगे। ये चटनी बड़ी निराली है, ये न सिर्फ खाने के लिए बल्कि लोगों का चरित्र समझने के बड़े काम आती है। तो थोड़ा पुदीना
1: राव की दृष्टि आपके साथ में घर से हट चुकी है, अब आप गधों को छोड़ इंसानों से प्रेम करेंगी। प्रेम संबंध के लिए समय अनुकूल है।
0: नई दिल्ली में तापमान आज सामान्य रहेगा, मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, लेकिन अगर आपको किसी से प्यार हो गया तो आप पर बारिश जरूर होगी।

0: हेलो।
1: जय माता जी।
0: जय माता जी।
1: मेरा नाम पूरन वर्मा है और मैं
0: हाँ
1: डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान गांव का
0: ओके
1: पंचमेल भूगोला से बात कर रहा हूँ सर।
0: ओके। पुरन जी बताइए कैसा है।
1: बस सर बढ़िया हूँ, आप सुनाओ।
0: मैं भी ठीक ही हूँ।
1: जी
0: आज कौन से गीत सुनना है आपका, कौन से फिल्म का?
1: जी सर, मूवी का नाम है बोल राधा बोल।
0: बोल राधा बोल। बोल राधा बोल। पुरन जी ये गाना तो नहीं है हम लोग के पास।
1: अच्छा फिल्म ही नहीं है ये,
0: हाँ फिल्म नहीं है।
1: तो फिर मृत्युदाता जी।
0: मृत्युदाता तो है। कौन से गाना सुनेगा मृत्युदाता से?
1: इसमें गाने के बोले फूलों ने छुआ मुझे कुछ ना हुआ, ये गाना
0: फूलों ने
1: फूलों ने छुआ मुझे कुछ ना छुआ तुमने छुआ तो, ऐसा कुछ गाना है।
0: गाना का बोल तो ऐसा नहीं है।
1: अब
0: दूसरा
1: इसमें कौन कौन
0: अपना
1: कौन
0: अपने बाप का क्या जाता है ऐसा है, और हमरे देशवा की
1: जी
0: इल्ला लो इल्ला लो, ये भी है एक तो। और कभी
1: जी
0: खुशियों की सरगम,

0: और ना ना ना ऐसा ना ना ना रे, दलेर मेहंदी का और तक झूम, यही है सिर्फ मृत्युदाता में यही गाना।
1: अच्छा, तो आपने तीसरा नंबर का कौन सा गाना बताया सर?
0: तीसरा नंबर है कभी खुशियों की सरगम।
1: अच्छा, ना ना सुना जी पे, ना ना नारे ना बाबा, ये
0: ओके, दलेर
1: गाना
0: मेहंदी।
1: बहुत मेहंदी वाला सुना दीजिए फिर, क्योंकि शादी माहौल का अक्सर चल रहा है, मेहंदी वाला सुना दीजिए।
0: ठीक है दलेर मेहंदी का ना।
1: जी,
0: ठीक है ठीक है
1: वो सबसे पहले तो आप सुनेंगे इस गाने को।
0: ओके।
1: और मेरा दोस्त है राकेश है, भगवान सिंह परवान जी है, अभिनाथ जी है, रमेश प्रजापति जी है, और जितने कोई माँ के कॉलर, अमर अमर है, बिमल है, अमर साहू है, और जितने कॉलर कोई माँ के श्रोताओं के लिए सुनाना चाहता हूँ ये गाना, जिसका भी नाम भूल गया, कोई माँ के श्रोता जो मेरा नाम लेते हैं उनके लिए खास कर।
0: ओके ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपको।
1: थैंक यू सर।
0: ओके थैंक यू। वेल फर्स्ट कॉलर आसे तो पुरान ताहे मांगिया से गाना और ताहे गाना मांगिया से मृत्यु दाता फिल्म परा दलेर मेहंदी सुरेश और सुदेश भोसले और खरस लगा आवाज दे से तो सब मानवी होने के लिए एंजॉय कर भी।

0: हेलो।
1: हेलो सर जी, नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार।
1: मैं रमेश प्रजापति, ग्राम माया, तहसील रहती, जिला सीहोर, एमपी से बोल रहा हूँ सर।
0: ओके, बहुत बहुत बधाई हो आपको। ओके,
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: फिल्म का नाम है सन्यासी।
0: सन्यासी।
1: जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा, भगवान गाने के बोले।
0: सन्यासी। सन्यासी। धुन रहा है मैं थोड़ा। सन्यासी। सन्यासी बहुत बहुत बहुत
1: नहीं,
0: अफसोस है, ये गाना नहीं है। आई मीन फिल्म नहीं है।
1: चांदनी चांदनी फिल्म है क्या? हाँ
0: चांदनी।
1: मेरे हाथों में नौ नौ चूड़ियां है। केवल
0: चांदनी। चांदनी रात। चांदनी रात तो है।
1: चांदनी फिल्म का नाम चांदनी, केवल चांदनी है। चांदनी मेरे
0: केवल
1: हाथ है।
0: केवल चांदनी तो नहीं है, चांदनी रात है।
1: चांदनी रात में कौन सा गाना है
0: बहुत है गाना, तो बहुत है।
1: बताओ मेरे को। अभी अगर मेरे गाने समझ में आए वो फिर बता दूंगा आपको।
0: दिल हो उन्हें मुबारक, ये मोहम्मद रफी का आवाज में है। दो दिल की खुशी और है चोरी की जात, कैसा बजे दिल का सितार, और है आंख मिली दिल गया चला गया,
1: तो आंख मिली कि दिल गया चला गया, यही वाला सुना था उसे।
0: शमशाद बेगम का आवाज में है ये। ठीक है, सुना देगा। ठीक है ठीक है। ओके हाँ,
1: तो मित्रों को याद कर लो। भगवान
0: याद कर लो।
1: सिंह परमार है, पूरन वर्मा जी है, नवराज मोदी जी, केसरी सिंह राजपूत है, मांगीलाल चंदेल है, धर्मवीर है दिल्ली से, और
0: ओके
1: आशुतोष जी है, संगीता जी है, पूनम जी है कानपुर से, पूर्णिमा जी है विजयपुरम से, अविनाश जी है, और राकेश जी है शिमला से, अमन भस्माकारी है, गोल्डी जी है, और अमर सिंह साहू और भाई को मुंडा है, रमेश पात्रे और आप।
0: ओके थैंक यू थैंक यू। ठीक है ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
1: धन्यवाद
0: ओके
1: सर आपको।
0: वेल लिसनर्स का नहीं होगा।

0: हेलो
1: हेलो हेलो नमस्कार
0: नमस्कार नमस्कार
1: जी, मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
0: ओके राकेश जी, बताइए क्या हाल है आपका।
1: जी बहुत बढ़िया है, अभी बारिश हो रही थी और सुहाना मौसम है।
0: ओके ओके
1: जी जी जी जी
0: अच्छा, आपसे आप कौन से गाना सुन रहे हैं आज?
1: मोहब्बत मूवी मिलेगा,
0: मोहब्बत ना?
1: हाँ नई वाली 99 वाली
0: मोहब्बत 19 कितना का बोला?
1: ये 99 पानी वाली नहीं, 90 वाली, नई वाली,
0: नई वाली तो मोहब्बत है, नई वाली।
1: अच्छा अच्छा मोहब्बत नहीं है,
0: मोहब्बत नहीं, पुराना थे, मोहब्बत पुराना है।
1: अच्छा नहीं, तो मैं आपको दूसरा

0: मूवीज बताओ।
1: और बताओ।
0: तो दिल मांगे मोर।
1: दिल मांगे मोर, ठीक है
0: जी जी जी। हेलो
1: हेलो, दिल मांगे मोर, हाँ कौन सी गाना चाहिए?
0: उसमें एक गाना है, मैंने चुन लिया।
1: मैंने चुन लिया, हाँ मैंने चुन लिया है।
0: हाँ ये गाना चला दो।
1: ठीक है चला देगा।
0: तो दोस्तों को याद करना चाहता हूँ।
1: हाँ याद करिए।
0: सबसे पहले तो ये गाना आपको डेडिकेट रहेगा।
1: ओके थैंक यू।
0: पूरन वर्मा का कॉल लग चुका है, रमेश प्रजापति का भी लग चुका है, अविनाश तेली है और भगवान सिंह परमार है और राम नरेश खंजर है और अमल भस्माचार्य हैं और अंजलि भस्माचार्य हैं और तमाम सुनने वाले श्रोता और जो आपके प्रोग्राम में लाइव जुड़ेंगे उनके लिए भी गाना डेडिकेट रहेगा।
1: ठीक है ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
0: धन्यवाद।
1: ओके थैंक यू।
0: ओके
1: লিচনাৰ্ছ কাৰণে এতিয়া শুনিব আপোনালোকে উদিত নাৰায়ণ আৰু শ্ৰেয়া ঘোষাল লগা ৱাস্তি আছে। ফিল্ম আছে দিল মাঙে মোৰ, গীত লিখা হৈছে সমীৰ, মিউজিক দিয়া হৈছে হিমেশ্ৰী শামিয়া।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ हेलो।
1: हेलो सर, नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार।
1: फिल्म का नाम है जुल्म की पुकार।
0: जुल्म
1: जुल्म की पुकार।
0: जुल्म की पुकार।
1: और गाने के बोल हैं, इस इश्क मोहब्बत की है अजीब रस्में, कभी जीने के वादे कभी मरने की कस्में।
0: ठीक है, ढूंढता है मैं, मिलेगा
1: और
0: नहीं
1: ये हो? नहीं मिले तो सर आप सुना दीजिए, दुल्हन वही जो पिया मन भाए।
0: ये गाना नहीं होगा हम लोग के पास।
1: तो कौन सी फिल्म का?
0: अभी जो दोनों भी नहीं है हम लोग के पास में।
1: दोनों नहीं है तो अनोखा अंदाज का है। मैं फिल्म में सितारों की रात भर तेरा जिक्र ही चलता है।
0: आप एक बार फिर बोल दीजिए।
1: अनोखा अंदाज फिल्म का नाम।
0: अनोखा।
1: इसमें है गीत, मैं फिल्म में सितारों की रात भर तेरा जिक्र ही चलता है। और ये नहीं मिले तो सर तू दीवाना पागल मेरा हो गया, ये वाला सुना दीजिए।
0: अनोखा दान तो है।
1: अनोखा अंदाज।
0: अंदाज तो नहीं है, अनोखा दान है और अनोखा रिश्ता।
1: नहीं नहीं नहीं सर, फिर एक काम करिए आप सुना दीजिए, कुली नंबर वन का सुना दीजिए, जेठ के दोपहरी में गर्मी लगे है।
0: ओके, कुली नंबर वन ना
1: जी।
0: कुली नंबर वन दो थे, एक 1995 का है, और कौन सा सुनना है?
1: गोविंदा वाली।
0: गोविंदा वाली कौन? गर्मी क्या बोला था?
1: मिर्ची ना, जेट की दो पहरी में गर्मी लगे है।
0: जेट की दो पहरी में ना?
1: जी जी हाँ सर।
0: ठीक है,
1: मिल गया।
0: हाँ मिल गया, ये बजा देगा।
1: जी जी सर, तो हमारे दोस्त है अमल भस्मचारी, विमल भस्मचारी और केसे सिंह राजपूत जी, रमेश प्रजापति जी हैं और पूरन वर्मा जी हैं, राकेश जी हैं शिमला से, अविनाश तेली जी है, पूनम दीदी है कानपुर से, और सभी लिसनर को साथ में सुनना है सर जो लाइव सुन रहे हैं।
0: ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। ओके
1: धन्यवाद सर।
0: धन्यवाद। तो ये गाना आप सुन मिलेगा, ये राइट आफ्टर दिस न्यूज ब्रेक, न्यूज हेडलाइंस का ब्रेक में होगा, इसका बाद आपको सुना देगा।
2: FM Tragoban 103 MHz, news, music and entertainment. This is FM Tragoban, FM 103 MHz.
0: Good afternoon, this is Akashvani Kohima, the news headlines. Prime Minister Narendra Modi hails the decisions taken in the first cabinet meeting under West Bengal's newly elected Chief Minister Shubhendu Adhikari. PM says the welfare of the people of West Bengal remains the top priority of the government. International Nurses Day is being celebrated today to mark the birth anniversary of Florence Nightingale, the founder of modern nursing. The theme this year is Our Nurses, Our Future. Empowered Nurses Save Lives. The day recognizes the essential role of nurses in patient care, community health and economic development. On the occasion, Union Home Minister Amit Shah and Union Health and Family Welfare Minister Jagat Prakash Nadda hails the nurses as backbone of country's healthcare system and pillars of hope. On International Nurses Day, Member of Parliament Rajya Sabha S. Phangnon Konyak says, through endless hours of service and unwavering compassion, nurses continue to stand beside humanity when it matters the most. Himanta Biswa Sarma takes oath as the Chief Minister of Assam's second consecutive term, making him the first non-Congress leader in Assam's history to hold the post for back-to-back terms. He was administered the oath of office and secrecy by Governor Laxman Prasad Acharya. External Affairs Minister S. Jaishankar calls for moving away from uni-dimensional narrative about mathematics and the sciences to one based on a democratization of history that recognizes India's foundational contributions. Indian Navy Chief Designate Vice Admiral Krishna Swaminathan says country remains prepared for any misadventure that comes from across the border and ready to quell it. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan says India's food stock is abundant and there is no food shortage in the country. President Donald Trump expects Taiwan and energy security to dominate discussions during his upcoming visit to China. In China, a fire at a residential building in Hunan province leaves 5 people dead and 2 others injured. Bangladesh forms committee to probe reason behind national cricket team's withdrawal from ICC Men's T20 World Cup in India. And in IPL cricket, Gujarat Titans to take on Sunrisers Hyderabad at Narendra Modi Stadium, Ahmedabad today. The match will start at 7:30 p.m. Indian time. That is all we have in this news headlines.
3: Fry kuriya homoy tel laga bishi properties khan bodli hoi jai aru eke tel tu bar bar cholaile total polar compounds TPC tu banai jai itu compounds khan tu kau karune biya ase aru itu para kisim bimari ulai de juntu khan ase hypertension atherosclerosis Alzheimer's disease aru liver bimari consumers khan laga health tu bachai kina rakhibo karune FSSAI para TPC laga limit tu 25% rakhi kina ase aru itu limit uporte vegetable oil tu na cholabo lage apuni laga health tu bachai kina rakhibole itu কদম খান লবি ফ্রাই কৰিবলে ভেজিটেবল অইল হি চলাবি পাৰিয়াতা কুকিং অইল টু একবাৰ হি চলাবি খালুৱা ফ্রাই কৰি কেনে বাচিয়া তেল টু ফিল্টাৰ কৰি কেনে খালি একবাৰ হি চলাবি বাচি কেনে থাকা তেল টু দুই দিন ভিতৰতে চলাই লবি সবজি টু কমটি টেম্পৰেচাৰতে ফ্রাই কৰিবি তেল গৰম কৰিয়া সময়তে তেল পৰা ধুঙা উলাব নাদিব লাগে ফ্রাই কৰিয়া সময়তে খালুৱা টুকুৰা খান টু কালা নহা আগতে বাৰ বাৰ উলাই থাকিবি ফ্রাই কৰিবলে কাৰণে ফ্রাইয়াৰ নহলিবি ষ্টেইনলেছ ষ্টীল বৰ্তন হি চলাবি টেষ্ট আৰু গুণ বিয়া নাওলাবৰ কাৰণে লোহা লগা কাৰাই খান হি চলাবি ইটো জানকাৰী দি আছে ষ্টেট ফুড ছেফটি অথৰিটি ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ
4: मार्केट के बारे में क्या
5: परफॉर्मेंस का बोलो
4: नहीं तो पूछे
5: मार्केट ट्रेंड देख
4: सुनने में आएगी
6: आज की खबर देख पहले ही बोला था ब्रो
5: माय प्रेडिक्शन इज
6: आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन
5: मेरे दोस्त ने बोला
7: देवी जी की सुनो
8: अब अच्छा लग रहा है ना लगेगा ही हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो म्यूचुअल फंड्स सही है
9: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें
10: Bepirsum, HIV and AIDS Act 2017
11: Pilana King Legalo HIV na AIDS Prevention and Control Act 2017 aida HIV matei teina leke pamenda gum kwaklu kurana

0: हेलो हेलो हेलो
1: हेलो सर जी, नमस्कार। जय श्री
0: ओके नमस्कार।
1: महाकाल सर जी, मैं शिवा लोहट एमपी विदिशा से हम बातचीत कर रहा हूँ सर आपसे। जी
0: ओके सो आप कैसे हैं?
1: सर जी, मैं बहुत अच्छा हूँ और आपके कार्यक्रम को एंजॉय कर रहा हूँ और आपकी मधुर आवाज इस कार्यक्रम में चार चांद लगा रही है सर।
0: ओके ओके थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच। तो आप कौन से
1: जी
0: फिल्म का गाना सुनना है
1: सर
0: आज?
1: जी, मूवी का नाम है मिलेंगे मिलेंगे। जी
0: मिलेंगी मिलेंगी।
1: सर,
0: ये मूवी तो नहीं है हम लोग के पास।
1: अगर मन मूवी मिल जाए तो वो देख लीजिए। जी
0: मन हाँ मन मिलिंग फिल्म तो है लेकिन एक तो गाना है सिर्फ नशा ये प्यार का।
1: ठीक है सर, यही सुना दीजिए। जी
0: ठीक है बजा देगा तो।
1: सर,
0: ओके थैंक यू।
1: हमारे कुछ दोस्तों को याद करना चाह रहे थे। जी,
0: ओके ठीक है याद करो।
1: हमारे पूरन वर्मा जी हैं,
0: ओके
1: राकेश जी हैं, भगवान सिंह परमार जी हैं, अविनाश जी हैं, गोल्डी जी हैं, पुरुषोत्तम जी हैं और तमाम सुनने वाले। थैंक
0: ओके ओके
1: यू सर।
0: थैंक यू सो मच। ओके
1: वेलकम।
0: लिसनर्स का नीति होनी वो अपने लोग के उदित नारायण लगा वास्ते फिल्म से मान।
2: नशा ये

0: हेलो।
1: हेलो, नमस्कार सर।
0: नमस्कार नमस्कार,
1: मैं त्रिपुरा से आशुतोष दत्तनाथ बोल रहा हूँ।
0: ओके आशुतोष जी, बताइए कैसे हैं आप?
1: बढ़िया हूँ। लग गया है।
0: ओके ठीक है ठीक है।
1: अभी लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा है, मुझे जानकारी नहीं था।
0: ओके,
1: मध्य प्रदेश का मेरा एक रेडियो दोस्त भगवान सिंह परमार जी मेरे को बोला था, अभी बोला था कि आप प्रयास कीजिए, आपका फोन लग जाएगा। तो भगवान जी को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ओके बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी। सो कौन से फिल्म का गान सुनना है आज आपको?
1: आज सर जी मुझे सुना दीजिए, 1975 में रिलीज हुआ।
0: ओके,
1: फिल्म का नाम है आक्रमण। गाने का कौन है, ये मौसम आया है कितने सालों की बाद, लता जी किशोर दा ने गाया इस गाने को।
0: आक्रमण, ये मौसम आया किशोर ना?
1: हाँ, किशोर दा और लता जी।
0: ओके बजा देगा तो बजा देगा।
1: और इस गाने को लिखा है संगीत का सबसे बड़ा राइटर आनंद बख्शी जी ने, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने सुर से सजा इस गाने।
0: हाँ म्यूजिक, हाँ ठीक है, आपने ठीक बताया। आपको पूरा जानकारी है मतलब।
1: सर जी मैं दो चार दोस्तों को याद करता हूँ।
0: ओके याद कर लीजिए,
1: पहले आप सुनेंगे सुनेंगे पूरन वर्मा जी, राकेश भैया शिमला से, भगवान सिंह परमार और रमेश प्रजापति, केसरी सिंह राजपूत, भगवान सिंह परमार, मंगलाल जी और नेटवर्क का सारे श्रोताओं को लेकर सुनना है, आप भी सुनेंगे।
0: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
1: थैंक यू सर।
0: थैंक यू थैंक यू। सो लिसनर्स का नीति होने वो अपना लोग के किशोर कुमार और लता मंगेशकर लगा वास्ते फिल्म से आक्रमण और गीत लिखे हुए आनंद बख्शी, म्यूजिक दिया हुए लक्ष्मीकांत प्यारीलाल।

0: सके।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने चिकित्सकीय शिक्षा में दाखिले के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा है कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली पर टिके विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे तथा पुनः परीक्षा में उपयोग किए जाएंगे। एजेंसी ने कहा है कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी और इसके लिए कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी

0: नहीं लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्वा सरमा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉक्टर सरमा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: मैं श्री हिमंत बिस्व शर्मा ईश्वर नाम शपथ लो जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति मैं प्रकृत विश्वास और आनुगत्य पोषण करिम।
0: डॉक्टर शर्मा के साथ चार विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी गई है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज सुबह विशेष अदालत में पेश किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइफ, सहायक नर्स मिडवाइफ और महिला स्वास्थ्य आगंतुकों को प्रदान किए गए। प्रत्येक पुरस्कार में एक प्रमाण पत्र, 1,00,000 रुपये नकद और पदक शामिल हैं। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.3% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1041 अंक लुढ़क कर 74,975 पर, जबकि निफ्टी 297 अंक की गिरावट के साथ 23,519 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी
1: आकाशवाणी रेनबो की मैजिकल फ्रीक्वेंसी पर मैं प्रियंका मामगेन आप सभी का स्वागत करती हूँ रेनबो हेल्पलाइन प्रोग्राम में। दोस्तों, ये 21वीं शताब्दी है, डिजिटल युग, ओटीटी का जमाना, सोशल मीडिया की पैठ, एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन के अनगिनत आयाम, और इन सभी आयामों के बीच एक खास विधा है जो हजारों सालों से अपनी पहचान, अपनी यूनिकनेस को बरकरार रखे हुए है, और वो है थिएटर की विधा।

0: रंगमंच की विधा। रंगमंच केवल मनोरंजन का साधन भर नहीं था या नहीं है, बल्कि थिएटर समाज का आईना बन बहुत कुछ सिखाता, समझाता, दर्शाता एक सशक्त माध्यम है। संवाद, संगीत, अभिनय का एक अद्भुत संगम थिएटर रंगमंच, जहां कलाकार लाइव सजीव रूप से दर्शकों के सामने अपनी कला को प्रदर्शित करते हैं। रंगमंच है तो दर्शक है, और दर्शक है तो रंगमंच है। दोनों सिक्के के दो पहलू हैं, और आपको जानकर हैरानी होगी कि रंगमंच सिर्फ एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन का माध्यम ही नहीं था या नहीं है, बल्कि थिएटर एक थेरेपी है जो कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत अहम रोल प्ले करती है। और यही वजह है कि आज हम रेनबो हेल्पलाइन प्रोग्राम में टॉपिक लेकर आए हैं, थिएटर थेरेपी, रोल ऑफ थिएटर इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व के विकास पे रंगमंच की भूमिका। और आज इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट तनय तारुणी, थिएटर प्रैक्टिशनर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैम, सभी को मेरा नमस्कार, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आकाशवाणी का इस अवसर के लिए।
0: जी तने, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपने थिएटर की शुरुआत कैसे की और कितने सालों से आप जुड़े हुए हैं थिएटर से, रंगमंच से?
1: तकरीबन 15-16 साल हो गए हैं, इंजीनियरिंग कर रहा था। और जैसा कि अक्सर होता है कि जब हम इंजीनियरिंग करते हैं तब समझ में आता है कि हमें करना क्या है। और वहीं पर एक छोटी सी मंडली थी मेरी कॉलेज में, उनके साथ हमने छोटी छोटी स्किट्स बनानी शुरू की। कॉमेडी स्किट्स होती थी, हंसी के लिए, मजाक के लिए। धीरे धीरे लगा कि ये एक सीरियस विधा है और इसको समझना चाहिए कि इसमें कितना डीपर हम और जा सकते हैं। उसी के बाद जब इंजीनियरिंग ख़त्म हुई तो मैंने ख़ुद को कुछ प्रोफेशनल थिएटर ग्रुप्स के साथ जोड़ा। डॉक्टर एम सईद आलम, नीति फूल, इन लोग के साथ मैंने काम किया, टॉम ऑल्टर सर के साथ मैंने काम किया, और मैंने जानने की कोशिश की कि इसमें क्या क्या बारीकियां हैं। कि थिएटर ना सिर्फ ये नहीं है कि हमने डायलॉग्स बोल दिए, बट डायलॉग्स के बीच का जो साइलेंस है वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें जैसे स्टेज क्राफ्ट क्या है, स्टेज पर प्रेजेंस क्या है, बॉडी लैंग्वेज, वॉइस, इन सब चीज़ों को समझा। और धीरे धीरे अभी भी जर्नी कंटिन्यूड है, अभी भी मैं प्लेस कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, और सीखने की कोशिश कर रहा हूँ इसको और कितना और अच्छा किया जा सकता है।
0: वाओ, क्या बात है। यानी आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और वो सभी लिस्टर्स जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट चाहते हैं अपनी, वो इस प्रोग्राम को ज़रूर सुने, क्योंकि जो थिएटर है उस वो बहुत बड़ा और अहम रोल प्ले करता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। तो अगर हमारे लिस्टनर्स हमसे जुड़ना चाहते हैं और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें व्हाट्सएप करें 9868107070, हमारा व्हाट्सएप नंबर। इसी के साथ साथ हमारी दो फोन लाइंस हैं जो स्टूडियो से जुड़ी हुई हैं, आप इन पर कॉल करके भी सीधे एक्सपर्ट से अपने क्वेश्चंस, अपने सवाल पूछ सकते हैं और उनका रिप्लाई ले सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 0112342108000, 0112342108004। मिलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए, थिएटर थेरेपी, रोल्स ऑफ थिएटर इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट।

0: आकाशवाणी रेनबो रेनबो हेल्पलाइन प्रोग्राम और आज हम विषय लेकर आए हैं थिएटर थेरेपी, रोल ऑफ थिएटर इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। और आज हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वो हैं तनय तारणी, थिएटर प्रैक्टिशनर। और इससे पहले कि हम क्वेश्चंस पर जाएं, एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप और प्लीज अपना क्वेश्चन पूछें।
1: जी मैम, मेरा नाम सिद्धार्थ अरोरा है और मैं तन्ने जी से ये एक सवाल है कि मुझे काफी इंटरेस्ट है थिएटर में, लेकिन एक चैलेंज जो फेस होता है कि स्टेज फियर है वो हमेशा रहता है, तो उस चीज को कैसे ओवरकम किया जाए, अगर एक्सपर्ट इस पे कुछ रोशनी डाल सकते हैं तो।
0: जी बिल्कुल, प्लीज आप एक्सपर्ट को सुने। जी
2: सिद्धार्थ, आपका जो सवाल है कहीं ना कहीं हम सभी का वो सवाल रहा है किसी ना किसी मोड पर। और मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टेज फियर है वो कितना भी बड़ा अभिनेता हो या कलाकार हो उसको हमेशा रहता है
1: जी।
2: लेकिन होता यह है कि जब हम खुद को ट्रेन कर लेते हैं, बार बार खुद को उस परिस्थिति में डालते हैं, तो जो हमारा सबकॉन्शियस है वो प्रिपेयर्ड रहता है उस डर को फेस करने में। और उसी से ये होता है कि मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप बार बार खुद को ऐसी परिस्थितियों में डालिए जहां आपको स्टेज फियर हो रहा है। यकीनन डर लगेगा, लेकिन जब आप तैयारी के साथ जाएंगे और पूरी फोकस पूरे कंसंट्रेशन के साथ अपनी परफॉर्मेंस करेंगे या जो भी आपको प्रेजेंट करना है वो करेंगे, तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आप स्टेज पर कंफर्टेबल हो रहे हैं। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि जिस चीज़ से मैं डर रहा था वो कोई इतनी बड़ी भी चीज़ नहीं थी। और जो भी स्टेज पर है वो सब देखिए हमारे ही और आपकी तरह ही लोग हैं, तो ऐसा कुछ अलग से उन्होंने नहीं किया है। उन्होंने बस ये किया है कि उन्होंने अपने उस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया है और उसी डर के साथ उन्होंने चैनलाइज किया है अपनी एनर्जीज को अपने को परफॉर्म करने के लिए। लेकिन ये तो हुई मेंटल चीज़ें, जो मेंटल प्रिपरेशन है उसकी चीज़ें। इसके बावजूद आपको कुछ तैयारियां करनी पड़ेंगी, जो भी आपकी परफॉर्मेंस है, जो भी आपकी, सपोज आप अगर ऑफिस में भी हैं तो आपको अगर प्रेजेंटेशन भी देनी है तो उसके लिए भी जैसे आप तैयारी करते हैं, आप रिहर्स करते हैं एक दिन दो दिन लगातार, खुद को तैयार करते हैं उस दिन के लिए, उस क्षण के लिए, इसमें भी आपको वही करना रहता है, इंटेंस रिहर्सल्स प्रिपरेशंस। और इनके साथ आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप काबू पा रहे हैं अपने इस स्टेज फेयर पर, और अगर वो है भी तो वो कहीं पे भी उस लेवल तक नहीं पहुंचेगा कि वो आपको रोके, रादर वो आपको और फ्यूल करेगा। और जब आप वो परफॉर्मेंस देकर आएंगे तो आपको एक एक एक, एक कामयाब इंसान की अनुभूति होगी जिसने अपना स्टेज फेयर कॉन्कर कर लिया है।
0: जी बिल्कुल, आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर बहुत ही खूबसूरती के साथ एक्सपर्ट दे चुके हैं। एंड तने एक और मैसेज आया है, व्हाट्सएप मैसेज है पैंथर।

0: तोमर का दिल्ली से, वो लिखते हैं कि रंगमंच बहुत ही खूबसूरत माध्यम है जीवन में ईमानदार और प्रामाणिकता लाने के लिए। रंगमंच किस तरीके से मदद करता है और साथ ही साथ असफलता और आलोचना को सकारात्मक रूप से किस तरीके से स्वीकार किया जा सकता है, ये रंगमंच कैसे सिखाता है।
1: जी बिल्कुल सही कहा पैंथर आपने कि थिएटर एक रेलेवेंस लेकर आता है लाइफ में, लाइफ में लिटरली एक लाइफ लेकर आएगा, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं जितने भी हमारे मोड्स ऑफ कम्युनिकेशंस हैं या एंटरटेनमेंट है, कहीं ना कहीं पैसिव है। थिएटर इकलौता ऐसी विधा है जो लाइव आप एक्सपीरियंस करते हैं, और जब आप लाइव अनुभव करते हैं तो आपको समझ में आता है कि जो भी आपकी अनुभूतियाँ हैं, जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उनसे आप अकेले नहीं जूझ रहे हैं। दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सबको कोई ना कोई कष्ट है, और हर कोई अपने उस कष्ट को लेकर ही आगे बढ़ रहा है। तो वो जो एकाकीपन होता है व्यक्ति का, जिसमें वो लगता है कि उसे लगता है कि दुनिया का सारा भार उसके कंधों पर आ गया है, वो समझता है कि ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़ जहाँ पर हम ये देखते हैं कि किस तरीके से उसको हमें समझना है दुनिया के संदर्भ में। दूसरा प्रश्न मैं भूल रहा हूँ जो इनका था।
0: जी बिल्कुल, मैं बताती हूँ। दूसरा है कि अनुशासन और आलोचना से
1: जी
0: कैसे रंगमंच हमें फाइट करने की शक्ति देता है।
1: जी अनुशासन, देखिए जब भी हम कोई भी प्रिपरेशन करते हैं, अभी सिद्धार्थ का भी सवाल था जहाँ पर हमने उनको बताया कि हमें तैयारी करनी पड़ती है, हमें रिहर्सल करना पड़ता है, और यहीं पर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है डिसिप्लिन का। और आप जितनी ऑनेस्टी के साथ खुद को प्रिपेयर करेंगे, जितनी ईमानदारी से अपने किरदार को समझेंगे, उसकी अनुभूतियों को, उसके सोशियो इकोनॉमिक सर्कल को, उतनी ही अच्छे तरीके से आप उसको प्रेजेंट कर पाएंगे मंच पर। वहीं पर आप जब भी मंच पर जाएंगे, देखिए जितने भी बड़े कलाकार हुए हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनकी आलोचना नहीं हुई, ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनका मजाक नहीं उड़ाया गया। इनफैक्ट जितना बड़ा कलाकार होता है, हम देखते हैं कि उनके उतने ही ज़्यादा स्पूफ्स बनते हैं, उतना ही ज़्यादा मजाक उड़ाया जाता है। तो थिएटर कहीं ना कहीं हमें ये भी ट्रेन करता है कि अगर हमारी आलोचना हो रही है, अगर हमें मजाक उड़ाया भी जा रहा है हमारा, तो उससे हमें डरना नहीं है, उससे हमें काम छोड़ना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि हम अपना काम और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। और यहीं पर हमारा भी विवेक है कि हम भी समझें कि आलोचना में अगर कोई एक या दो पॉइंट ऐसे हैं जो कि सचमुच हमारे ऊपर एप्लीकेबल हैं, तो उसको समझ के हम खुद में सुधार लाने का भी प्रयत्न करते हैं, ना सिर्फ अपनी परफॉर्मेंसेज में बल्कि अपने वास्तविक जीवन में भी।
0: जी बिल्कुल। अनीता का गाजियाबाद से मैसेज आया है, वो कहती हैं कि अक्सर हम लोग खुद ही अपने आप में उलझे रहते हैं, थिएटर किस तरीके से हमें हेल्प करेगा अपने आप से उलझने में और अपने आप को समझने में।
1: जी अनीता, बहुत गंभीर प्रश्न है ये। इनफैक्ट अभी हम देख रहे हैं कि हम सभी अकेले होते जा रहे हैं, और थिएटर जैसा मैंने पहले भी बोला कि एक कम्युनिटी प्रैक्टिस है, आप थिएटर अकेले नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं या तो आपको ऑडियंस चाहिए, को एक्टर चाहिए, एक डायरेक्टर चाहिए, तो ये क्या होता है, एक ग्रुप बनता है। और जब आप एक ग्रुप में आते हैं तो जो सबसे पहले जो आपका एकाकीपन है वो ख़त्म हो जाता है। दूसरा, आप ये भी समझते हैं कि आपके ही जैसे कई लोग हैं जिनके जीवन में अलग अलग प्रकार की विपत्तियाँ हैं, और उसके बावजूद वो खुद को ठीक से रख रहे हैं, वो खुद को आगे बढ़ा रहे हैं। तीसरा, इनके साथ आपको एक एक्सप्रेशन का भी तरीका मिलता है। जब आप इतने लोगों के साथ मंच पर होते हैं, जो आपकी आंतरिक पीड़ाएं हैं, आपको मौका मिलता है उसको चैनलाइज करने का अपने परफॉर्मेंसेस के थ्रू। निश्चित रूप से हम एक समाज में रहते हैं और बहुत सारे ऐसे विचार हैं, बहुत सारे ऐसे थॉट्स हैं जो शायद हम अपने आसपास के लोगों को अगर बोलें तो शायद उन्हें तकलीफ होगी, लेकिन जब हम वही उन विचारों को मंच पर प्रस्तुत करते हैं एक किरदार के माध्यम से, तो दो चीज़ें इससे बहुत स्पष्ट रूप से होकर आती हैं। एक, हमने उस किरदार को भी निभा दिया, और दूसरा, जो हमारी आंतरिक पीड़ा थी उसको भी हमने प्रकट कर दिया, तो एक वेंट मिल जाता है, एक इमोशनल रिलैक्सेशन मिलता है। तो मैं यही सुझाव दूंगा कि अगर आप इस थिएटर की विधा को थोड़ा और सीरियसली प्रैक्टिस करें तो जो भी एकाकीपन है उससे आप थोड़ा सा दूर होंगी, कहीं ना कहीं आपको एक फ्रेंड सर्कल मिलेगा। इनफैक्ट जो मेरी मित्र मंडली है उसमें से बहुत सारे लोग मुझसे सिर्फ इसलिए मिले हैं क्योंकि मैंने उनके साथ थिएटर किया है, और वो मित्रता अभी तक जारी है 15-16 सालों में। तो ये जो कनेक्शन बनाते हैं हम इन लोगों के साथ, जो कि हम साथ में गाने सुन रहे हैं, साथ में पढ़ रहे हैं, कोई प्ले या कोई फिल्म डिस्कस कर रहे हैं, तो इससे भी हमारा एक सोशल सर्कल बनता है जो कि हमें मदद करता है अपने एकाकीपन और अकेलेपन को दूर करने के लिए।
0: जी बिल्कुल। एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो।
2: हेलो, नमस्कार।
0: जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप और अपना क्वेश्चन पूछे प्लीज।
2: मैं राकेश बात कर रहा हूँ, कोटखाई शिमला हिमाचल प्रदेश।

0: आप जब भी एक दो बार, तीन बार, चार बार स्टेज पर जाएंगे, हर बार कोई ना कोई नई गलती करेंगे, और यही गलती हमें अवसर देती है उसको सुधारने का, सीखने का, ताकि हम अगली बार उसको ना दोहराएं। शिमला बहुत अच्छी जगह है, मैं वहाँ रहा हुआ हूँ, और वहाँ पे गेटी थिएटर भी है, आप वहाँ से थिएटर सीख सकते हैं, वहाँ पर आप जो वहाँ के टीचर्स हैं या को एक्टर्स हैं उनसे समझ सकते हैं। परफॉर्मेंसेज हम देखते हैं, और अभी तो हमारे पास बहुत से माध्यम हैं जहाँ से हम जिन लोगों ने अच्छा अभिनय किया है उनको हम बारीकी से समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने किस विधा से इस अपने किरदार को निभाया है। डर, मैं आपको फिर बोलना चाहूँगा कि स्वाभाविक है, भूलना भी स्वाभाविक है। उस भूलते हुए क्षण में आप खुद को किस तरीके से संजो के रखते हैं, अपनी कामनेस, अपनी मेंटल एक्टिविटी को अलर्ट रखते हैं, इसी से आपका डिसाइड होगा कि आप कितने अच्छे परफॉर्मर बन रहे हैं। डर का ना होना परफॉर्मर होना नहीं है, डर के होते हुए परफॉर्म करना जो है वो एक अच्छे और सच्चे परफॉर्मर की पहचान होती है।
1: जी बिल्कुल, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही खूबसूरत भी है। थेरेपी, थिएटर थेरेपी, रोल ऑफ थिएटर इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। और ग्रेटर नोएडा वेस्ट से सुरोजित पूछते हैं कि थिएटर थेरेपी कैसे हो सकती है, और साथ ही वो कहते हैं कि थिएटर के बारे में आजकल जानकारी बहुत कम मिलती है कि कब कौन सा नाटक जो है वो कहाँ पर मंचित किया जा रहा है, इसकी उन्हें बहुत कम इन्फॉर्मेशन मिलती है, और वो जानना चाहते हैं कि थिएटर को थेरेपी किस वजह से हम कह रहे हैं, समझना चाहते हैं।
0: जी देखिए, जानकारी की उपलब्धता हमारे पास कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे आपको मिल सकती है निश्चित रूप से, लेकिन अगर आपको वो सर्च करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि आप किस प्रकार का थिएटर देखना चाहते हैं। ऐसे कई वेबसाइट्स हैं, ऐसी कई पोर्टल्स हैं जिनसे आपके आसपास जो भी प्लेज हो रहे हैं वो आप बहुत आसानी से देख सकते हैं और वहाँ जाकर लाइव एक्सपीरियंस कर सकते हैं उस अनुभव को। थेरेपी हम इसीलिए कहते हैं थिएटर को क्योंकि अभी जितने भी हमारे मानसिक तनाव हैं, जितनी भी हमारी आंतरिक त्रासदियाँ हैं, उनसे हम सभी जूझ रहे हैं। हमने बताया कि थिएटर कैसे एक ग्रुप एक्टिविटी है, एक कम्युनिटी एक्टिविटी है, तो सबसे पहले तो जो एकाकीपन है वो दूर हो ही जाता है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ हम सीखते हैं जो कि थेरेपी में हमें समझाई जाती है, इट क्रिएट्स एन एम्पैथी। जब मैं कोई किरदार निभाता हूँ, चाहे वो सही है या गलत है, मैं रीज़न समझने की कोशिश करता हूँ कि जो भी निर्णय लिया होगा उस किरदार ने वो क्यों लिया। मैं उसके शूज़ में जाके उसकी तरह सोच पाता हूँ, और इसी चीज़ को जब हम जीवन में देखते हैं, जो हमारे हजारों मलाल हैं अपने आसपास के लोगों से, समाज से, एम्पथी क्रिएट होती है ये समझने की जिन लोगों से हमें शिकायत हैं वो भी हमारी तरह इंसान रहे हैं, इंसान हैं, और उनसे भी गलतियाँ हो सकती हैं। तो इससे आपके अंदर का जो रोष है, जो क्रोध है, वो कम होगा। आप समझेंगे कि दुनिया परफेक्ट नहीं है, लोग परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद उनमें कुछ खासियत है, उसमें कुछ अच्छाइयां हैं जिनको लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो थेरेपी का जो दूसरा एस्पेक्ट है, जहां हम बहुत गुस्से में रहते हैं, बहुत तनाव में रहते हैं, वो कम होता है। तीसरा जो इमोशनल वेंट, हमने पहले ही बताया कि आप जब कोई किरदार निभा रहे हैं आप अपनी आंतरिक पीड़ाओं को चैनलाइज कर सकते हैं उस किरदार को निभाने के लिए। और चौथी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है एकाग्रचित करता है आपको थिएटर। हम आजकल एक ऐसे कल्चर में जी रहे हैं जहां 30-30 सेकेंड में हमारे कॉन्टेंट का मैटर चेंज हो जाता है, दिमाग एकाग्र नहीं हो पाता। थिएटर एक बहुत लंबी एक लंबी यात्रा है। एक प्ले जब हम करते हैं तो दो तीन महीने उसकी रिहर्सल्स होती हैं कर्मठता के साथ, मन एकाग्र होता है और हम उसी वातावरण में जीते हैं जिस एरा में वो प्ले पिक्चराइज हुआ है या वो प्ले परफॉर्म होना है। तो हम ये भी समझते हैं कि जो ये युग है इसके परे कितने सारे युग रहे हैं, और उन सभी युगों में जो लोग हैं, जो चरित्र हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, उनकी पीड़ाएं हमसे बहुत ज़्यादा अलग नहीं थीं। जो भी हम महसूस करते हैं वो भी वही महसूस करके गए हैं यहाँ से। तो ऐसे में जो हमें एक ये लगता है कि जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं या जो तकलीफें हैं वो बहुत पर्सनल हैं, ऐसा नहीं है, वो सब यूनिवर्सल्स हैं। और जब हम इन त्रासदियों को प्ले के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि जिन लोगों ने भी इस दर्द को सहा है, सहते हुए वो आगे बढ़े हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि ह्यूमैनिटी की या मानवता की सारी समस्याएं ख़त्म हो गई हों, लेकिन जिसने भी जो किया है इन सभी तकलीफ़ों के होते हुए आगे बढ़ा है, और वो हमें प्रेरणा देता है कि हमें भी उसी पथ पर चलते हुए अपनी पीड़ाओं को साथ में रखते हुए आगे बढ़ते रहना है।
1: थिएटर थेरेपी, रोल ऑफ थिएटर इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आज की हेल्पलाइन का

टॉपिक। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट है तनय तरणी, थिएटर प्रैक्टिशनर। आप भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप प्लीज हमें व्हाट्सएप करें 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर। दो फोन लाइन्स हैं जो स्टूडियो से जुड़ी हुई हैं, आप इन फोन लाइन्स पर कॉल करके भी एक्सपर्ट से डायरेक्टली अपने सवाल पूछ सकते हैं। नंबर्स हैं 0112342108, 0112342108।

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
3: आपके परिवार के जो बड़े लोग हैं उनके साथ परीक्षा पे चर्चा पढ़ने के लिए कहिए, उसकी चर्चा कीजिए, और कोई मंत्र है तो खास लाइन करके बताइए, देखिए ये पीएम ने ये कहा है तुम पढ़ो।
2: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
4: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9

0: दस बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: वेलकम बैक आकाशवाणी रेनबो, रेनबो हेल्पलाइन प्रोग्राम। आज का टॉपिक थिएटर थेरेपी, रोल ऑफ थिएटर इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट तनय तरणी, थिएटर प्रैक्टिशनर। और बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं कि थिएटर किस तरह से पर्सनालिटी का विकास कर सकता है, तो थोड़ा और जानना चाहेंगे तनय, किस तरीके से पर्सनालिटी डेवलपमेंट करनी हो तो थिएटर को चुना जा सकता है।
3: जी, मैं विशेष रूप से बात करना चाहूँगा इंट्रोवर्ट्स लोगों के लिए, क्योंकि जो एक्सट्रोवर्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से खुद को एक्सप्रेस कर लेते हैं, लेकिन इंट्रोवर्ट्स जो कि शायद मैं भी हूँ, हिचकते हैं अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखने में, या वो जब किसी नई जगह पर जाते हैं तो उन्हें थोड़ा सा हेजिटेशन होता है लोगों से घुलने मिलने में। थिएटर हमें वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है जहां हम अपने इंट्रोवर्ट नेचर होने के बावजूद एक नए कोहर्ट में खुद को एस्टैब्लिश कर सकते हैं और अपनी बात स्पष्ट रूप से रखने की कला को समझ सकते हैं।
2: जी,
3: होता यह है कि एज एन इंट्रोवर्ट हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें चलती होती हैं, लेकिन हमें पता नहीं रहता कि हम इसको बोलें तो बोले कैसे या लोगों के सामने लेकर कैसे आए। लेकिन जब हम एक थिएटर ग्रुप में होते हैं या प्रैक्टिशनर होते हैं तो अलग अलग किरदारों के माध्यम से, रिहर्सल्स के माध्यम से, जो इम्प्रोव ट्रेनिंग्स होती हैं जहां हम एक सिचुएशन दे दी जाती है और कहा जाता है कि 2 मिनट के अंदर इसको इनैक्ट करके आपको दिखाना है अपने को एक्टर के साथ, अपने साथी के साथ आपको एक एक, एक दृश्य को मंच करना है, ऐसे में आपका जो मस्तिष्क है वो ट्रेन होता है अपनी बात को स्पष्ट रूप से निकाल के बाहर रखने की। जो भी आपके अंदर हेजिटेशंस हैं, इनहिबिशंस हैं, उनसे आप उबरने का एक प्रयास, एक एक अपॉर्चुनिटी मिलता है थिएटर के माध्यम से। तो एक्सट्रोवर्ट्स तो थिएटर करें ही करें, लेकिन जो भी इंट्रोवर्ट्स हैं, जिनको जो बहुत धीमा बोल रहे हैं, जो बहुत ही एक क्लोज फ्रेंड सर्कल में तो बहुत अच्छे से बोलते हैं लेकिन बाहर जाते हैं तो एकदम गुमसुम हो जाते हैं, उनको बिल्कुल करना चाहिए थिएटर या इस तरीके की प्रैक्टिस। खासकर अभी के ज़माने में और ज़्यादा ऐसा हो रहा है कि हम लोग अपनी ही दुनिया में व्यस्त होते जा रहे हैं।
2: बिल्कुल,
3: यहाँ हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जब हम एक ग्रुप में जुड़ते हैं तो वहाँ अलग अलग क्लास से, अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग एजुकेशन से लोग आए रहते हैं, उनके बीच हम कैसे घुल मिल रहे हैं, उनके बीच कैसे हम अपनी एक आइडेंटिटी एस्टैब्लिश कर रहे हैं, ये भी हमें सीखने को मिलता है। तो एज एन इंट्रोवर्ट डर शुरू में बहुत लगेगा। जब मैं फर्स्ट टाइम रिहर्सल जा रहा था मेरे हाथ पैर कांप रहे थे बहुत ज़्यादा, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने सब लोगों के साथ काम किया, और वहाँ जितने लोग होते हैं सभी इस डर से जूझ रहे होते हैं, तो एक एक कॉमन प्लेटफॉर्म, एक कॉमन फ्रेंड सर्कल मिलता है आपको उसमें।
2: जी बिल्कुल तनय, आप इतनी खूबसूरत बातें कर रहे हैं, इतना ज्ञानवर्धक बातें कर रहे हैं, तो हम आपकी लाइफ के बारे में भी जानना चाहेंगे कि जब आपने थिएटर को चुना तो थिएटर ने आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस लेके आया थिएटर, और आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने में थिएटर का कितना बड़ा हाथ है। साथ ही साथ क्या जो परिवार वाले होते हैं, घर वाले होते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब कोई एक रंगमंच कर्मी आगे बढ़ता है इस क्षेत्र में तो?
3: थिएटर का देखिए इससे बड़ा प्रभाव और क्या होगा कि मैं अगर थिएटर नहीं कर रहा होता तो मैं आपके सामने नहीं बैठा होता। तो इतनी देर से अगर मैं बोल पा रहा हूँ, बातें शेयर कर पा रहा हूँ लिसनर्स के साथ, तो वो शायद इसलिए है कि मैंने थिएटर किया है, तो मैं ये सारी चीज़ों से, इनहिबिशन से थोड़ा थोड़ा उभरा हूँ। थोड़ा थोड़ा इसलिए क्योंकि अभी भी मेरी लर्निंग कंटिन्यूड है, अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ। तो जब भी आप एक्सपर्ट बोलते हैं मुझे थोड़ी सी हेजिटेशन होती है। आई एम मोर ऑफ अ प्रैक्टिशनर और अ लर्नर और अ स्टूडेंट ऑफ दिस। शुरू में मैं भी इंट्रोवर्ट था, अभी भी हूँ। नए लोगों से मिलना थोड़ा सा कठिन लगता है मुझे, लेकिन जब भी ये डर लगता है या एक एक एक हेजिटेशन होती है तो फिर सारे प्लेज याद आ जाते हैं, और ये लगता है कि जब तुम स्टेज पर गए थे और इतने सारे लोगों के सामने तुमने परफॉर्म कर दिया तो यहाँ भी कर दोगे। तो वो जो एक मेंटल मेमोरी डेवलप हो जाती है जैसे जैसे आप एक आर्ट को फॉलो करते हैं, वो आपकी सबकॉन्शियस की स्ट्रेंथ बनती है और वो आपको आगे हमेशा हेल्प करती है। परिवार की बात जहाँ तक है, मैं बहुत सौभाग्यशाली रहा हूँ कि जो मेरा परिवार है काफ़ी सपोर्टिव रहा है मेरे इस जर्नी में। मेरे माता पिता हैं, उन्होंने बहुत पेशेंस के साथ समझा है,

0: नाम जरूर जानना चाहेंगे।
1: जी, मेरी माता का नाम है श्रीमती सुधा दास, पिताजी का नाम श्री गजेंद्रनाथ दास। इन्होंने काफी सपोर्ट किया है मेरे हर प्ले को, उन्होंने पता नहीं 4-5 बार तो निश्चित रूप से देखा है। कभी ये नहीं कहते कि ये प्ले तो मैंने देखा हुआ है, दोबारा क्यों बुला रहे हो। तो जब भी वो ऑडिटोरियम में होते हैं, मुझे लगता है कि 2 लोग तो हैं ही जो देख रहे हैं मुझे।
0: कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई लेवल पे,
1: जी कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहता है। इसके अलावा हमारा ज्वाइंट फैमिली सेटअप है, चाचा चाची हैं, छोटे भाई बहन हैं, कजन्स हैं, उनका सपोर्ट काफी रहा है। मेरी दादी अब नहीं है, लेकिन उन्होंने भी मेरे प्लेज काफी देखे हैं। मेरी वाइफ श्रुति हैं, उनका आज जन्मदिन है, उनका सपोर्ट काफी रहा है, क्योंकि कई सारे ऐसे मौके आते हैं जहां रिहर्सल्स की वजह से, कॉन्स्टेंट परफॉर्मेंसेस की वजह से मैं उपलब्ध नहीं हो पाता हूँ बहुत सारे क्षणों में जहां मुझे परिवार के साथ होना चाहिए, और उनका पूरा अधिकार बनता है कि वो मुझे कहें कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा कहा नहीं। उन्होंने मेरे इस फितूर को या इस क्राफ्ट को बहुत बारीकी से समझा है, और वो समझते हैं इस चीज़ों को। तो ये सपोर्ट अगर नहीं होता मेरे पास, तो शायद मैं ये सारी चीज़ें नहीं करता, तो मैं कर पाता। तो उसका मैं बहुत आभारी हूँ परमेश्वर का, कि उन्होंने इस रूप का परिवेश मुझे प्रदान किया,
0: परिवार मिला है। जी, आज आपकी ज़िंदगी का बहुत ही ख़ास दिन है, आपकी जो बेटर हाफ हैं, वाइफ हैं, उनका बर्थडे है, कुछ कहना चाहेंगे उन्हें?
1: हैप्पी बर्थडे श्रुति, बस यही कहना चाहूँगा।
0: क्या बात है। हमारी तरफ से श्रुति के लिए गाना, और आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इसी टॉपिक पर आगे बातचीत जारी रहेगी।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: हर साल 27 मार्च को विश्व रंगमंच

0: दिवस वर्ल्ड थिएटर डे सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि रंगमंच के महत्व इम्पोर्टेंस को दर्शाता है। भारतीय रंगमंच की बात की जाए तो भारतीय रंगमंच सिर्फ एंटरटेनमेंट का माध्यम नहीं है, बल्कि थिएटर एक जीवंत परंपरा है जो भारत की बहुभाषी और सांस्कृतिक विविधता को समेटे हुए है। रामलीला का मंचन हो या फिर रासलीला की रहस्यमय अभिव्यक्ति, नौटंकी हो, स्वांग हो, माच हो, तमाशा हो, भवई हो, नकल हो, यात्रा हो, जी हाँ, कई सारे रंग रूपों में थिएटर हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। और सोने पे सुहागा बात यह है कि थिएटर हमारे व्यक्तित्व के विकास में भी बहुत सहायक होता है, और यही वजह है कि आज हेल्पलाइन प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं थिएटर थेरेपी की, रोल ऑफ थिएटर इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। और हमारे साथ हैं एक्सपर्ट श्री तनय तरणी, थिएटर प्रैक्टिशनर। और जो मैसेज अब हमारे हम तक पहुंचा है, हमारे पास आया है, वो भेजा है पैंथर तोमर ने दिल्ली से। एक्सपर्ट वो जानना चाहते हैं कि अक्सर समाज में जब खलनायक जो होता है वो वास्तविक जीवन में भी संदेह की दृष्टि से देखा जाता है, जब थिएटर की बात आती है तो जो सामाजिक धारणा के अनुसार एक कलाकार नेगेटिव रोल को प्ले करता है, तो क्या इसका असर उसकी पर्सनालिटी पर भी पड़ता है?
1: दिलचस्प प्रश्न है ये। मुझे लगता है ये उस कलाकार पर निर्भर करेगा कि जो भी वो किरदार निभा रहा है उसको वो अपने वास्तविक जीवन में किस हद तक लेकर आना चाहता है या आएगा। लेकिन यहाँ पर हमें ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि जो भी एक्टर्स या कलाकार खलनायक का किरदार निभाते हैं वो एक बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, क्योंकि जब तक खलनायक बलिष्ठ नहीं होगा, खलनायक क्रूर नहीं होगा, तब तक जो नायक है हम उसकी महानता को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। जब हम देखते हैं कि एक खलनायक था जो कि जिसको जीत पाना एकदम कठिन था, जैसे डेविड गोलियत की कहानी है जिसमें जो जो खलनायक है वो इतना विशाल का एक राक्षस है, और जब उसको जो नायक है वो हरा देता है तभी हम समझते हैं कि नायक ने कितना बहादुरी का काम किया। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस पक्ष को भी हम रखें, उसकी निर्ममता जब तक उस पराकाष्ठा पर नहीं पहुंचेगी हम लोगों के अंदर वो वेदना जागृत नहीं करा पाएंगे जो हम चाहते हैं कि वो कराएं। लेकिन जो प्रश्न है कि उसका किरदार पर कितना असर पड़ेगा, तो एज एन अलर्ट एक्टर हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम किसी भी किरदार को सीमित करें कि वो हमारे जीवन में इस तरह भी ना आ जाए कि हमारा पूरा जीवन उसी के इर्द गिर्द घूमने लगे। तो एक स्पेशल ट्रेनिंग एज एन एक्टर हमको ये भी करना पड़ता है कि हम दूर रखें अपने स्टेज के परफॉर्मेंस को और अपने वास्तविक जीवन को। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू ज़रूर हैं, लेकिन अलग अलग पहलू हैं। मैं जिस तरीके से स्टेज पे बात करता हूँ उस तरीके से अगर मैं से मेट्रो में या घर पे बात करने लगूंगा तो लोग मुझे बोलेंगे कि ये पागल हो चुका है।
0: ओह ब्रूटस, यू टू। एब्सोल्युटली ब्रूटस बनना नहीं है, बट उसको स्टेज पे अभिव्यक्त करना है।
1: सिमिलरली, और यही अगर मैं जैसे घर पे बात करता हूँ वैसे स्टेज पे बात करने लगूंगा तो मेरी बात ही नहीं सुनाई देगी। तो ये बीच का जो बैलेंस है एज एन आर्टिस्ट, एज अ क्रिएटर, वो भी हमको समझना।
0: जी बिल्कुल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है ऋतुका अंबाला से। वो कहती हैं कि जब रंगमंच के जो कलाकार होते हैं, जो वो इस कला से जुड़ते हैं, तो कई सारी टेक्निक्स वो प्रैक्टिस करते हैं, इससे पर्सनालिटी किस तरीके से डेवलप होती है, और वो कहती हैं कि आवाज़ कितनी इंपॉर्टेंट रहती है जब हम रंगमंच की बात करते हैं, और ये किस तरीके से पर्सनालिटी को शेपअप करती है।
1: जी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। देखिए, थिएटर डेफिनेटली एक ऑडियो मीडियम है। जो भी हम प्रिपरेशंस करते हैं उसमें हमारी आवाज़ का प्रोजेक्शन हम कोशिश करते हैं इस लेवल का हो कि जो ऑडिटोरियम में सबसे पीछे लोग बैठे हुए हैं उन तक हमारी आवाज़ पहुंचे। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी आवाज़ को इस तरीके से होन करें कि जब प्रोजेक्ट करने का मौका आए हम में वो काबिलियत हो कि हम उसको दूर तक पहुंचा पा रहे हैं। कुछ बेसिक एक्सरसाइजेज हैं, ट्रेनिंग्स हैं जो हम एक्टर्स जब हम अपनी ट्रेनिंग शुरू करते हैं तो हम उसको करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो है लाउड रीडिंग, और इसके लिए आपको कोई भी थिएटर ग्रुप ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप अपने घर में कर सकते हैं। कोई भी किताब उठाइए, हिंदी, अंग्रेजी, जो भी भाषा आपको प्रिय है, आप बस उसको ज़ोर से पढ़िए। जब आप जोर से पढ़ेंगे आपकी वॉइस क्लियर होगी, आपका डिक्शन इंप्रूव होगा, लैंग्वेज की समझ डेवलप होगी। जब भी हम किरदार निभाते हैं उनके अलग अलग एक्सेंट्स होते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड्स होते हैं, वो समझना जो है वो हमें लिटरेचर बहुत हेल्प करता है। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, टू लाउड रीड एंड टू अंडरस्टैंड एंड विजुलाइज की जो भी सीन हम पढ़ रहे हैं वो एग्जैक्टली हो क्या रहा है उसमें. तो मस्तिष्क के पटल पे जब ये विजुअल्स बनते हैं,

0: वो बहुत हेल्प करते हैं हमको परफॉर्मेंस को क्रिएट करने में। कुछ बॉडी मूवमेंट्स होती हैं जिन पे हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि स्टेज पे जब हम हैं तो हम हमारा हमारे पास सिर्फ एक रिसोर्स है, वो हमारी बॉडी। इसी में हमारी मूवमेंट्स भी हैं, आइज भी हैं, हमारी वॉइस भी है, जो हैंड गेस्चर्स हम कर रहे हैं वो भी है। तो एक एक परफेक्ट संतुलन होना बहुत ज़रूरी है हमारे हैंड बॉडी आइज मूवमेंट में। तो कुछ एक्सरसाइजेज हैं, वॉक्स हैं, योगा बहुत हेल्प करता है इन बॉडी मूवमेंट्स को डेवलप करने में। सबसे इंटरेस्टिंग है इम्प्रोवाइजेशंस। आप कोई भी सिचुएशन ले लीजिए
1: जी
0: और आप उस पर दो सीन का सीन खुद इनैक्ट कीजिए अपने मन से। डायलॉग्स भी आप लिखिए उसके, आप उसका बैकग्राउंड म्यूजिक भी डिसाइड कर सकते हैं, और अब तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, आप उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। धीरे
1: बिल्कुल
0: धीरे आप अपनी क्राफ्ट को होन कर सकते हैं इन सारी टेक्निक्स के हिसाब से।
1: जी बिल्कुल। इसी के साथ एक और मैसेज हम ले सकते हैं, उसमें ये मैसेज आया है अमित का। वो कहते हैं कि जब थिएटर की बात आती है तो टीम वर्क होता है ये, तो अक्सर वो कहते हैं कि जब वो अपनी पर्सनल लाइफ में देखते हैं, वो न्यूक्लियर फैमिली से हैं, और वो कहते हैं कि जब मैं अपनी पर्सनल लाइफ को देखता हूँ तो मैं टीम वर्क के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता हूँ, क्या थिएटर इस पर मेरी हेल्प करेगा?
0: जी अमित, निश्चित रूप से ये कठिनाई हम सभी को होती है, और ना सिर्फ न्यूक्लियर फैमिली से, ज्वाइंट फैमिली में भी जब हम रहते हैं तो काफ़ी कठिन हो पाता है, होता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं के लोगों के साथ हमें रहना है, और ऐसे में खुद को नम्र रूप से प्रस्तुत कर पाना काफ़ी कठिन हो जाता है। थिएटर निश्चित रूप से आपको मदद करेगा, क्योंकि होगा ये कि जब आप एक ग्रुप में जाएंगे आपको वहाँ भांति भांति के लोग मिलेंगे, भांति भांति की विचारधारा होंगी। कई लोग होंगे जो बहुत नम्र रूप से आपसे बात करेंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो शायद आपसे शुरू में रूडली बात करें, लेकिन धीरे धीरे आप समझते हैं कि ये प्रोसेस का एक हिस्सा है। और हमेशा ऐसा होगा कि ना सिर्फ थिएटर, आप कहीं जा भी रहे हैं या किसी ऑफिस में भी काम करते हैं तो वहाँ भी समान विचारधारा के लोग मिलें ऐसा जरूरी नहीं है। हमेशा हमें विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं के बीच में रहना पड़ता है। थिएटर हमें मेंटली और इमोशनली ट्रेन करता है कि डिस्पाइट ऑल द डिफरेंसेस विच आर देयर इन आर फिलोसफीज, वी आर स्टिल टुगेदर एंड वर्किंग फॉर अ सेम कॉज। जब भी हम रिहर्सल्स करते हैं, जरूरी नहीं है कि जो सामने वाला को एक्टर है उससे हमारी बहुत खासी दोस्ती हो, लेकिन स्टेज पे अगर हमें परफॉर्म करना है कि हम अच्छे दोस्त हैं तो हम अच्छे दोस्त हैं। तो वो अपने सारे डिफरेंसेस को पीछे भुलाकर हमें स्टेज पर परफॉर्म करना होता है, और वो एक बहुत बड़ा लेसन होता है जो हम सीखते हैं थिएटर में।
1: जी बिल्कुल। एक और मैसेज आया है, मैं लेना जरूर चाहूंगी इसे। ये लिखते हैं कि रंगमंच एक ऐसी विधा है जहां रिहर्सल्स तो होती है लेकिन रीटेक्स नहीं होते हैं, तो ये जो रीटेक का डर है कि नहीं होंगे, ये किस तरीके से पर्सनैलिटी को हमारी और ज्यादा अच्छा बनाएगा? क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो पहली बार में ही सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन जिंदगी हमें बार बार कहती है कि नहीं, और रीटेक रीटेक पे रीटेक। तो ये जो थिएटर है किस तरीके से हमें अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने में मदद करता है?
0: जी, उन्होंने बिल्कुल सही समझा है कि थिएटर में या स्टेज पे रीटेक्स नहीं होते हैं, और इसी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जब हम रिहर्सल्स कर रहे हैं तब बहुत इंटेंसिटी के साथ रिहर्सल्स करें, फोकस, कंसंट्रेशन। जब हम रिहर्सल स्पेस पर होते हैं तो दुनिया के बाहर क्या हो रहा है हमें कुछ पता नहीं रहता, और अगर हम वो ठीक से नहीं करेंगे तो डेफिनेटली फंबल होगा स्टेज पे, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, एंड दैट विल नॉट रिफ्लेक्ट गुड ऑन आर पार्ट, क्योंकि ऑडियंस जो आई है वो हमारी फ्लॉलेस परफॉर्मेंस को देखने आई है, हमारी फंबल को सुनने नहीं आई है। तो वो जो एक कमिटमेंट है टुवर्ड्स ऑडियंस, और यही से हमारा फोकस डेवलप होने लग जाता है। सो ना सिर्फ स्टेज, बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स होते हैं जहां आपको लाइफ के देने हैं जहां आपको मेंटली बहुत फोकस रहना पड़ता है। तो चूंकि आपने रिहर्सल्स की हुई हैं, आप फेमिलियर हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, इसीलिए आप खुद को काम रखते हुए आगे बढ़ पाते हैं।
1: जी बिल्कुल। आज हमने बात की थिएटर थेरेपीज की, हमारे साथ थे तनय तारणी, और चलते चलते आप क्या कहना चाहेंगे लिसनर्स से?
0: मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो भी आप कर रहे हैं बहुत मन से कीजिए, बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ कीजिए, क्योंकि यही एक चीज़ है जो हमारा काम है, वो हमें बनाए रखता है, जीवन में आगे बढ़ाए रखता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कंट्रोल में रहती हैं, हमें बस उन पर फोकस करना है। मुश्किलें, परिस्थितियां, विपत्तियां सबके जीवन में हैं, लेकिन जिसने भी जो कुछ किया है वो उन विपत्तियों के बावजूद किया है, और हमें भी वही करते रहना है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया एक्सपर्ट आपका यहाँ आने का और इतनी अच्छी जानकारी सभी के साथ शेयर करने का।
0: बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं को, सभी लिसनर्स को।
1: जी, इसी के साथ मैं प्रियंका मामगन लेती हूँ विदा। अगले प्रोग्राम में आपके साथ रहेंगी दीपिका भटनागर, प्रोग्राम आशियाना।

की वाणी आकाशवाणी और आकाशवाणी एफएम रेनबो पर इस वक्त आपके साथ जुड़ चुकी हूं मैं दीपिका, लेकिन हाजिर हूं प्रोग्राम आशियाना। और आप जानते ही हैं कि आशियाना में आज का जो दिन है यानी कि ट्यूसडे को जो ये 2 से 3 का वक्त है, ये रहता है हमारी महिला श्रोताओं के नाम यानी कि फीमेल लिसनर्स के नाम, उनके नाम जिनसे हम इस वक्त पर खास तौर पर जुड़ते हैं और वो बातें करते हैं जो जरा ज्यादा जुड़ी हैं उनसे, वो बातें करते हैं जो कभी कभी वो कर नहीं पाती है, वो बातें करते हैं जो कभी उन्हें यादों के गलियारे में ले जाती हैं तो कभी उन्हें उनकी अहमियत का एहसास दिलाती है। तो बस आज किस बारे में यहाँ पर बातें करेंगे हम डियर लेडीज आपसे बताऊंगी, लेकिन फिलहाल के लिए इस गाने से करते हैं शो की शुरुआत। आप थाम लीजिए दीपिका का हाथ और निकल पड़िए इस सफर पर मेरे साथ।

आकाशवाणी एफएम रेनबो दीपिका के साथ बना हुआ है आपका साथ। और मैंने कहा था कि वापस आकर बताऊंगी, यानी कि गाने के उस पार बताऊंगी कि आज आशियाना में डियर लेडीज किस बारे में हम करने जा रहे हैं यहाँ पर बातें। तो देखिए, बातें जब महिलाओं से जुड़ी हैं, लड़कियों से जुड़ी हैं, तो बातें जरा थोड़ी सी पीछे लेकर चलते हैं। अब आप सोच रहे हैं पीछे कहाँ लेकर चलते हैं, तो मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर जा रही हूँ जहाँ आपके चेहरे पर मुस्कान आने वाली है, क्योंकि मैं आपको लेकर जा रही हूँ बचपन की गलियों में। जी हाँ, बातें कर रही हूँ उन छोटी छोटी सी यादों की जो लगभग हर लड़की के बचपन का हिस्सा रही है। हर लड़की उनसे कहीं ना कहीं रिलेट कर पाती है, और हर लड़की जब भी उन्हें याद करती है तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। और कई बार जब जिंदगी आगे बढ़ जाती है, शादी हो जाती है, अपने बच्चे हो जाते हैं, और अगर वो बेटी होती है तो उन्हें वैसा कुछ करते देख सीधे हम पहुंच जाते हैं अपने बचपन की उस गलियों में, और खोल लेते हैं यादों का वो पिटारा, पलट लेते हैं यादों की उस किताब के पन्ने जहां पर अपने बचपन की यादें दस्तक देती हैं, और हमें याद आ जाता है कि अरे हम भी तो कुछ ऐसा ही किया करते थे। तो चलिए इसी बारे में करूंगी बातें। फिलहाल के लिए इस गाने को, इस ब्यूटीफुल से गाने को बल्कि यहाँ पर प्ले कर रही हूँ। एंजॉय कीजिए और बने रहिए मेरे साथ आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6। आपके साथ है आपकी दोस्त दीपिका। प्रोग्राम है आशियाना।

आकाशवाणी एफएम रेनबो आपके साथ है दीपिका। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आशियाना, और बातें हो रही हैं उन बचपन की यादों की जिनसे हर लड़की रिलेट कर सकती है, जो हर लड़की के बचपन का कहीं ना कहीं हिस्सा रही है। तो चलिए शुरुआत मैं अपने बचपन की एक याद से करती हूँ जो मुझे अभी तक बहुत क्लियरली याद है, और अक्सर मम्मी भी उस बात का जिक्र कर दिया करती है। तो बचपन में मैं क्या किया करती थी, मेरे पास किचन सेट था जो मुझे लगता है 90s के दौर में हर लड़की के पास कहीं ना कहीं रहा होगा। तो मेरे पास एक किचन सेट था जिसे मैं प्रॉपरली सेटअप किया करती थी, छोटे छोटे से बर्तन और छोटी छोटी सारी चीजों के साथ, और उसके बाद अपने पापा को बिठाकर कहती थी कि आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बना रही हूं या फिर मैं आपके लिए खाना बना रही हूं। और बाकायदा उनसे पूछा भी करती थी उन्हें वो खाली कप पकड़ाने के बाद कि उन्हें ये चाय कैसी लगी, और वो भी क्या करते हैं, वो कह देते थे कि बहुत अच्छी बनी है चाय, मेरी गुड़िया रानी ने, मेरी बिट्टो रानी ने तो सबसे अच्छी चाय बनाई है। और मतलब उस वक्त जो चेहरे पर खुशी आती थी ना, सच में बचपन में ऐसा महसूस होता था कि हमने चाय बना दी है, मुझे सच में ऐसा लगता था कि मैंने चाय बनाई है, पापा ने उस चाय को पी लिया है। तो ये एक ऐसी याद है जो मुझे लगता है मेरे बचपन की है, और मैं कहीं ना कहीं इस याद के बारे में जब भी सोचती हूँ या जब भी ये याद मुझे याद आ जाती है तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, जो अभी भी मेरे चेहरे पर आ चुकी है। और भी ऐसी ही कुछ प्यारी सी यादों के बारे में बात होगी, क्योंकि ये याद मुझे लगता है सिर्फ मेरी नहीं है, बहुत सारी लड़कियों ने अभी इस बात को सुनकर अपने उस बचपन को याद कर लिया होगा जिससे जुड़ी है ये याद। और भी ऐसी ही यादों का जिक्र करेंगे, फिलहाल के लिए कीजिए सोनू निगम की आवाज में इस प्यारे से गाने को एंजॉय।

हाँ जी, दीपिका है आपके साथ आकाशवाणी एफएम रेनबो पर, और आप मेरा हाथ थाम कर अभी कर रहे हैं यादों की गलियारों की सैर, क्योंकि बातें कर रही हूँ

ऐसे चलेंगे, चलकर देखते थे साड़ी पहनकर, सर पर दुपट्टा लेकर, याद है ना आपको? क्योंकि मुझे तो लगता है सबको ये कहीं ना कहीं ज़रूर याद होगा, ऐसा हमने कहीं ना कहीं ज़रूर किया। और ऐसा जब आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, आज भी जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, जब उनके पेरेंट्स इस तरह के वीडियो पोस्ट करते हैं, हम उन्हें ऐसा करते हुए देखते, तो कहीं ना कहीं लगता है ना कि अरे ये तो हमने भी किया था हमारे बचपन में, या फिर ये याद तो हमारे बचपन से भी जुड़ी है।

बचपन की यादों की जब बात होती है तो सबसे खूबसूरत चीज जानते हैं क्या होती है? वो ये होती है कि एक याद को हम याद करते हैं और ढेर सारी यादें साथ आकर हमें बिल्कुल अपने साथ यादों के गलियारे में ले जाती हैं। हम तो एक याद को बुलाते हैं, हम तो एक याद से मुलाकात करते हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता कब ढेर सारी यादें आकर हमें घेर लेती हैं, कब हमें गले लगा लेती हैं। और यूं तो यादें कई बार मायूस करने वाली भी होती हैं, यादें कई बार दिल दुखाने वाली भी होती हैं, लेकिन बचपन की यादें अक्सर मुझे लगता है सभी की खूबसूरत होती हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो जब हमें बड़े होने के बाद याद आती है तो एहसास होता है कि बचपन कितना खूबसूरत था। उन्हीं यादों की बातें हो रही हैं, बचपन की उन्हीं यादों की बातें जिनसे हर लड़की रखती है इत्तेफाक, जिनसे हर लड़की कर सकती है रिलेट। आकाशवाणी FM रेनबो पर आप है दीपिका के साथ, प्रोग्राम सुन रहे हैं आशियाना।

अब बचपन की यादों की बात चल रही है तो बर्थडे वाले एक्साइटमेंट का जिक्र कैसे नहीं हो। आज की डेट में बर्थडे काफी हद तक हम कई बार बर्थडे पर वेकेशन

प्लान कर लेते हैं या फिर अपने पार्टनर के साथ, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ कहीं घूमने चले जाते हैं या ट्रीट दे देते हैं उन्हें या फिर किसी अच्छी जगह पर जाकर पार्टी कर लेते हैं। लेकिन कुछ भी कहिए, वो बचपन वाला बर्थडे ना कहीं भी लौट कर नहीं आने वाला है। अब देखिए, बचपन में हमें कितनी एक्साइटमेंट होती थी बर्थडे की, कौन सी फ्रॉक पहननी है, क्या कुछ खरीदना है, किसी सहेली के जन्मदिन की पार्टी में अगर होकर आए हैं तो उसके वहाँ पर क्या कुछ खास हुआ था, फिर मम्मी को आकर कहना कि वही चीज़ करो, वही बना दो या फिर वही ला कर दे दो, पापा को बताना कि केक कैसा चाहिए, गिफ्ट क्या चाहिए। कितनी एक्साइटमेंट हुआ करती थी ना बर्थडे की, अलग अलग ड्रेसेस खरीदना, क्योंकि उस वक्त पर तो मोबाइल नहीं थे ऐसे जिनमें कैमरे मौजूद हों। अगर मैं 90s की बात करूं, उस वक्त पर तो फिर कैमरा, खास कैमरा पर्सन आता था बर्थडे के दिन जो पिक्स क्लिक करता था, तो उसकी भी अलग एक्साइटमेंट होती थी कि फ़ोटोज़ आएंगी, फ़ोटोज़ क्लिक होंगी, कितना कुछ खास उस वक्त पर होता था। लेकिन एक बात जो मैं सभी लेडीज़ से यहाँ पर कहना चाहूँगी, सभी जो श्रोता, महिला श्रोता हमें सुन रही हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम खास महिलाओं के लिए ही होता है मंगलवार के दिन, इसलिए बार बार मैं जिक्र कर रही हूँ महिला श्रोताओं का, तो उनसे जो एक ख़ास बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि बचपन की तरफ जब भी आप पलट कर देखेंगी तो आप महसूस करेंगी कि कितना खुलकर तब आप जिंदगी जिया करती थी, कितना कुछ जिंदगी में ऐसा था जो आप किया करती थी या फिर जिसे पाने की आप ख्वाहिश रखा करती थी, कैसे बेफिक्र होकर आप अपनी बात कह दिया करती थी, कभी खुश होकर हंस देती थी खिलखिलाकर, तो कभी जब आंखों में आंसू आ जाए तो उन्हें भी बहा लिया करती थी। आज अगर आप कहीं चुप चुप सी हो गई हैं, अगर कहीं खुद की बातों को नहीं सुन रही हैं, कहीं खुद की बातों को अनसुना कर रही हैं, सबको जिंदगी में आगे रखकर कहीं खुद को पीछे रख लिया है, तो ज़रा रुकिए और बचपन वाली उस अपने आप से मिलिए और फिर सोचिए कि आपको क्या खुद में बदलने की ज़रूरत है, क्या है जो आपको बदल देना चाहिए, क्या है जिसके बारे में आपको ज़रा रुक कर दोबारा सोचना चाहिए, क्योंकि किसी भी उम्र में खुद को प्रायोरिटी देना बिल्कुल गलत नहीं है। और एक चीज़ और, बचपन में हम बहुत खुलकर ज़िंदगी जीते हैं और बड़े होने के बाद कहीं ना कहीं उस बात को ज़रा सा साइड रख देते हैं, अपने सपनों को, ख्वाहिशों को, पूरे हुए तो ठीक, नहीं हुए तो कई बार भूल जाते हैं, अपनों की ख्वाहिशें पूरी करने में लग जाते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि बचपन में जिस तरीके से खुद को एक्सप्रेस कर देते थे बड़े होने के बाद नहीं कर पाते। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, खुलकर कहिए जो कहना है और ज़िंदगी को खुलकर जिए।

0: आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
1: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
3: दादी दादी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
4: पता का चाय, गजब का स्वाद।
5: आकाशवाणी FM रेनबो पर आप हैं दीपिका के साथ और प्रोग्राम आप यहाँ पर इस वक्त सुन रहे हैं आशियाना, जिसमें आज हम बातें कर रहे हैं उन यादों की जो लेकर जाती हैं किसी भी लड़की को यादों के गलियारे में। वो यादें, बचपन की यादें, जो जब भी याद आती हैं तो चेहरे पर मुस्कुराहट तो आती ही है, लेकिन साथ ही साथ बचपन के वो खूबसूरत पल भी मानो आँखों के आगे आ जाते हैं।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दिल के तराने।

गाने नए पुराने नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आप जुड़े हुए हैं दीपिका के साथ। प्रोग्राम सुन रहे आशियाना, बातें हो रही हैं बचपन की यादों की, उन यादों की जिनसे हर लड़की रखती है इत्तेफाक। अब देखिए बचपन कितना सिंपल था ना हमारा, ना सोशल मीडिया ना फिल्टर्स, लेकिन रियल वाले स्माइल, ना ज्यादा फोटोज, लेकिन वो कम मोमेंट्स ही कितने खास थे ना। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जो पल जिनमें हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं वो तस्वीरों में कैद नहीं होते, वो हमारे दिल में कैद होते हैं। और बचपन के पल हर लड़की के लिए कुछ ऐसे ही होते हैं। एक और चीज जो आपको जरूर याद होगी वो होगी स्कूल का वो टिफिन, जब हम स्कूल में जाते थे और टिफिन लेकर जाते थे, और कई बार अपने टिफिन से ज्यादा अपनी सहेलियों का टिफिन अच्छा लगता था। मतलब किसके टिफिन में क्या है, कल क्या लेकर जाना है, कितना खास लगता था ना ये। और वो अलग अलग रंगों वाले पेन, जिनका शौक मुझे लगता है हर लड़की को होता था, अलग अलग रंग के पेन से अपनी नोटबुक को डेकोरेट करना, या फिर अलग अलग रंग के वो रबर बैंड्स जो हम अपने बालों में लगाया करते थे। स्कूल में तो अगर बाल छोटे हैं तो अलग बात है, बड़े हैं तो बांध कर जाना होता था, लेकिन घर पे आते ही मम्मी से दो चोटी बनवा कर वो कलरफुल से रबर बैंड लगाना। बताइए जरा किसे किसे याद है।
2: गीत की लत मोहे ऐसी लागी

आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आप हैं दीपिका के साथ। प्रोग्राम आप यहां पर सुन रहे हैं आशियाना बातें। हमने की उन यादों के बारे में, यादों की उन पन्नों के बारे में जिन्हें अक्सर हर लड़की को पलटना चाहिए, क्योंकि वो उन्हें ले जाते हैं बचपन के गलियारों में। और जब बचपन के गलियारों में हम पहुंचते हैं तो चेहरे पर मुस्कुराहट अपने आप आ जाती है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है यादों को भी याद करते रहना, ताकि चेहरे पर मुस्कुराहट आते रहे, क्योंकि यादें जो हैं वो वक्त के साथ पुरानी नहीं होती बल्कि और खूबसूरत हो जाती हैं। एक और छोटी सी याद से जो मुझे लगता है हर लड़की रिलेट कर पाएगी, वो है बचपन में गुड़िया की शादी करवाना। हम सभी ने कभी ना कभी ये किया है अपनी सहेलियों के साथ मिलकर कि तुम अपना गुड्डा ले आना, मैं अपनी गुड़िया लेकर आऊंगी और हम उनकी शादी करवाएंगे। याद है ना आपको? क्योंकि मुझे ये वाली याद बिल्कुल बहुत ही खूबसूरती से याद है। तो बस कभी कभी यादों के उन पन्नों को पलटिए, सोचिए जरा कि क्या कुछ था जो बचपन में आपको खुशी देता था, जिसे बचपन में आप करना चाहते थे, और चेहरे पर ले आइए वो मुस्कुराहट जो कई बार जिंदगी की उलझनों में उलझकर जरा सा गुम हो जाती है। फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम में दीपिका को आपसे लेनी होगी इजाजत, लेकिन 4 बजे दोबारा जुड़ूंगी आपके साथ। अभी के लिए, यानी कि इस प्रोग्राम के लिए, दीजिए मुझे इजाजत। 3 बजे से आप सुनेंगे रेडियो डॉक्टर और 4 बजे आपके साथ दोबारा जुड़ूंगी मैं लेकर के प्रोग्राम अल्फा जैन।

0: itu para tar kalwa aro management to ekla bal para chula bole na parija ekta ase guru laga bimari aro itu khan kiniga kurile na lagibo itu alop jani lobo ekta ase foot and mouth disease FMD itu to bishi bia bimar ekta ase itu to guru aro buffalo laga bitore pat ekjon ekjon ge pheli jae itu bimari to ami khan laga local guru khan na hoina exotic aro crossbreed guru khan ge lagibole bishi chance ase itu bimari to temperature uthina shuru hoi jae 104 degrees fahrenheit to 106 degrees fahrenheit aro itu pochote anorexia depression aro itu para tar dut dia to komti hoi jae temperature to ek dui din te nami jabo aro itu samoy te tar laga muk aro interdigital jaga te vessels ulai jae aro itu deri samoy hua pochote putina ulcers hoi jae itu laga stage te tar laga muk te saliva to bishi ula shuru hoi jabo tar laga theng te vesicles phutia to lal dagi hoi jabo aro itu pra janwar to uthi pole na pari jabo itu bimari to kiniga na lagibo koile sob janwar ke killed polyvalent vaccine pra vaccinate koribo lage sal te dui bar choi muina isap te vaccinate koria to recommend kore janwar thakia laga jaga to safa rakhibole lage aro bal para contaminate hoa jaga khan to disinfect koribole lage milk fever itu jo dut dia guru khan laga metabolic bimari ase aro itu bimari to kiniga lage koile tar laga lactation samoy te tissue fluids te ionized calcium level to giri jai kile koile dut bishi dia guru khan te colostrum te calcium laga demand to bishi uthi jai itu bimari to dut bishi dia guru khan ke lagi jai aro itu bimari to calvin kurina 48 hours pochote ahi jai itu bimari to kiniga na lagibo koile parturition nawa agote vitamin D to administer koribo lage lactating guru khan te phosphorus intake uthai dibo lage tar laga diet te calcium phosphorus ratio 2.5:2 maintain koribo lage calvin kurina alop din pochote samoy alop chori kana nahoile bi dut sop naulabo lage rinderpest kettle plague itu to guru khan laga bishi bia bimari ekta ase itu bimari to temperature uthi jai aro tar laga gao to elementary tract laga mucosa te thaki jai itu bimari para sob jaga te bishi economic loss philai itu bimari kiniga na lagibo koile juntu janwar itu bimari lagi jabo pare itu khan to sob cell culture vaccine para vaccinate koribo lage guru bacha to choi para 8 muina te vaccinate koribo aro 12 months pochote repeat koribo dangor hoi ja guru khan to 3 sal te ek bar vaccinate koribo jaka to safa rakhibole lage aro disinfect koribole paribo mastitis itu to mammary gland te julia infection ase aro itu to physical chemical aro biological agents bacteria fungus virus yeast itu kan nishna para philai itu to dut laga quality de chemicals aro physical changes para jani pai causative agent to teeth canal para ahe itu bimari to kiniga na lagibo kuile dut to sob olai lobo lage usor jaga khan to safa rakhibole lage janwar to safa aro gao bal rakhibi hemorrhagic septicemia itu to dut dia guru aro buffalo khan laga bacterial bimari ase aro itu to pasteurella maltosida para philai itu bimari to janwar stress samoy te lagi jai stress samoy te organisms to tar laga bitore thaki jai sobse bishi upor respiratory tract te itu khan laga upor te bimari thakya to khalwa aro pani para gao bal thakya janwar khan laga upor te pheli jai itu bimari to guru karone bishi bia ase aro itu para janwar to 24 hours te mori jabo pare अचानक पूरा गांव टेम्परेचर तो उठी जाब 106 टू 108 डिग्रीज फारेनहाइट सलाइवा बेसि ऊला शुरू हो जाब बेसि बिया डिप्रेशन और इतु पचते मरी जाब इतु बीमारी तो किनिगा नलगिब कोले एक महीना मनसून आगते जानवर सब एच एस वैक्सीन परा वैक्सीनेट करिबोले लागे डीप इंट्रा नस्कुलर वैक्सीनेशन 2.4 मिलीलीटर वैक्सीन तो पांच परा छह महीना बीमारी नलगिबोले मदद करिबो एंथ्रेक्स इतु तो बैक्टीरियल बीमारी आसे आरो इतु तो किनिगा जानिबो पारे कोले जानवर तो टेम्परेचर उठी जाय सब कोटानियास ला हेमोरेज आरो सब सरस टिश्यू और स्प्लिन तो डांगर हो जाए इतु ऑर्गेनिजम्स तो जानवर लगा गाँवते उला और गुशिया जगह खान देपरा गुशीना इनफेक्ट कर दिए जो तो भारत साल कारण नामरी ना थकना पोर्स हो जाए कम्बा समय तो खून तानिया मखी खान पर बीमारी तो फैलाए कम्बा तरीका पर इनफेक्ट हो जा तो इनफेक्ट हो जा गास खान खा समय सास लुना स्पोर्ट्स दे परा आही जा और चामरा दे गाँव थकिया परा लगी जा इतु कान निचना आसे इतु बीमारी तो किनिगा नलगिब कोले एंडेमिक एरियास खान दे वैक्सीनेशन तो कुरिब लगे 1 मिलीलीटर डोज सबक्यूटेनियसली तो एक साल कारण जानवर के सुरक्षित रखिब एंथ्रेक्स लगिना मरी जा जानवर खान तो बाल परा फिलाबोले लगे ऊर जगह खानते साफा रख लगे ब्लक क्वार्टर इतु तो बेक्टेरिया पर फिला बीमारी आसे इतु बीमारी ते मजल तो जुले टेक्सेमिया और एक पर दुई दिन भरे मरी जाए टेम्परेचर तो उठी जाब डिप्रेशन एनारेक्सिया और एफेक्ट हो जा ठेंग तो फुली जाब इतु बीमारी तो किनिगा नलगिब कोले हदाय साल गुरु बच्चा छयपरा दुई साल हो जा खांगे वैक्सीनेट कर लगे इतु थकी कमन डिजीजेस अफ केटल एंड देयर प्रिवेंशन आज आम प्रोग्राम तो इतना सीज कर शुनी ला सब मानुक खुशी जाना दिया से आया कल नतुन कथा लैना लग कर
1: News, music, and entertainment. This is FM Dragobah. FM 103 megahertz.
2: Hello, dear lovely listeners. That was our program on Rural Connect you are listening to right now. And we have about 10 minutes worth of local artists here for you. So I have two songs here. They are cover songs. First is Million Reasons by Amala Ozakum, and it will be followed by Cowboy Take Me Away by Akili and Company. After that, at 5, we have the traffic updates, and it will be followed by the program Kaleidoscope.

0: 대비나 산티 니보 군에
1: 왜 대비 두사 켈라제 맞아 아 미비 두사 켈라세 오케이 올리비
2: 도
1: 어 샘부스티 올리비 안티 안티 칸 아마 칸 헤어 레인지 그래 보일라 맞아 아로 두존 지디 아직까지 있어 두존 밀 밀라 타길래 저세 바바 칸 홀리 메리즈 나 그래도 아메리칸 타임 때
2: 맞아
1: 이또 아이 두존 밀리아세 홀리 메리즈 나 디보 고에도 이 두간에 아메리칸 타임 때 원래도 1km 오비 나 보해 아로 두존 사디 오버데 고래 마네 아쿠 Jagine Kotako believe Napare, Pula. Ajigali Abdikan system do a little in the soap in Alago Zedo. Did you do a little Abdikan anti etahe? Manenise, arrangement.
2: So Abdijin Jinajin do take it.
1: A Jinajin do take it. Or the Kadiki do as
0: Amikan so close to a kia set on.
1: Church Aro seed Abdevi, a kilo of it again. Well, maybe Sadi Hobo le Mondevina. That's why I'm here.
2: Okay, and how did you marriage? What did you say?
1: 50 years ago. 50?
2: Oh, 50th anniversary.
1: Anniversary, 3rd December.
2: That's so good to hear. So, sir, how did you 50 years ago? Why? You have proven that the Inyala system is working. Why?
1: So,
2: मन ला यंगर लिसनर्स कन कनी को कोलेज ना एंगल तानवी ने सक्सेसफुल मैरिड लाइफ था योले
1: आई इतु तोले तो मैरिज मैरिज तो सक्सेसफुल था कि बोले ना एक जन लोगते माफ तो था कि बोले माइकी करा होले मता तो नीचे हो लगे वो मता करा होले माइकी भी स्टैंडे नामी के ने था कि बोले असल तो इतु इन्हें का होले लास्ट इन हुए आरो खोड़े ईश्वर बड़ा मज़ूत रखिले ये तो बड़ा ही लस्सी नॉय इन्हीं का ऐसे
2: उसी पास भी होने वाले उसी कुछी से
1: अभी तो हमारे तो इन्हीं का कोई नहीं अरो मेरे को तो 76 थे शादी करी थी
2: 76 ना
1: 1976 थे तो दिया तो 50 years
2: ना
1: दिया से तो साथ 50 years पर से
2: ये कुछ चीज़ दे दिखी ना
1: ना हमारे दामाद चुपरा भी 47 हो जाओ ना 48 हो जाओ अमी 26 टाइम दे साथ ही बोल चुका
2: 26 ना
1: ताई 24 हाफ मिनट में दे वाला 25 ना मुझे किधर बोल चुका ताई
2: आई थिंक एच केप तो अलग तो था क्यों लगी नहीं ना
1: वाय मतलब तो बिसी अलग दामाद लगे लेकिन दूजों ने एक ही साल निश्चित आए थे
2: अरो सर एक ता मुझे तो उम्मीद है तो अपनी एक ही दे मेंशन करी थी ना मान ला मैरिज ला तो एक दिन तो शी सिंबल था किसी ना तो तान लोग पाच पाची भी ना करे ना अरो इन्हीं सिंबल लाइफ था कि ना इन्हीं पेरेंट्स का नॉलेज आंटी के नुरा ये तो इन्हें कुछ आकर नहीं आप बोल जाए ना ले अच्छी गली साइज़ गली दिला सिस्टम तो पिछे अलग पिछे तो अपनी करनी डिफेंस तो itu di dalam majudi kena lagi, na, aro kundo palu, aro ajaikli mon younger generations kan kiki kalti kuri sese marriage te, because ajaikli saya juga le divorce rates si highest, na, manon holy marriage sese kan tadi tu kru, holy tu aro ekto help punya cara cari hujala cases kan si olah sese, na, to itu an avoid kru le ajaikli la kiki kalti kuri sese manon.
1: Asal tu ajaikli tu na. আমি কাম পয়লা তো হলে তো মন সাফা পড়া মেম মিলা করে থাকে মোটা মাইকি একই লোক থাকিলে বি একো বিয়া কাম তো মনতে না থাকে তো এইটো কারণে পয়লা তো ইনিকাল সিস্টেম নাই এইটো কারণে ম্যারেজ টু বি পিসি আমা বাবা লাগা ইচ্ছা নহলে না পারে পয়লা তো ফার্স্ট অ্যারেঞ্জমেন্ট তো আমা বাবা লগতে যাব তাতে আমা বাবা যে হওয়ার পাছতে তার চুকুরা চুকুরি লতে খবর দিব তো খবর দিয়া টাইমতে মন না থাকিলে বি আমা বাবা ইচ্ছা হইলে তো আমি কিন্তু করিবই লাগে এনেকা হয় পয়লা আর ইতিয়া তো হলে তো ছাড়া ছাড়ি বেশি হওয়া তো এটু একজন একজন লাগা না জানি কিনে যা নিমিতে বেশি বার তো হয়ে আছে বলা আমি ভাবনা তো কেলে মানে আজিকালি তো জোয়ান চুকুরি জোয়ান জোয়ান খান চুকুরি খান বি চিনা জানা করি নিয়ে সাথে হওয়া তো বেশি হয়ে যাইছে হলে বি এনেকা ঠিক একজনে জোর লাগা নিয়ম না জানে কিনে সাথে ঘোরা নিমিতে ছাড়া ছাড়ি বেশি হয়ে থাকে হলে

0: FM 103 megahertz.
1: Food intolerance aro allergies laga symptoms tu vomiting, diarrhea, pet bika, skin rashes, chehara jiba aro lips phulija, sas lobole duk pa khana se. Itu khan laga karan tu khalua kunba gaute namila karune hobo pare. Khalua packets te kunba ingredients gaute namila laga jankari khan likhi kina thaka tu bhal para puri lobi. Itu likha khan tu iniga hobo pare bi. Itu likha khan tu iniga hobo pare may contain allergen, nohoile bi lactose free, gluten free. Khalua gaute namila khan tu nakini bi. Jun khan lactose intolerant ase, tai khan dud aro dud para bana saman khan nakhabo lage, aro gluten intolerant thaka khan tu ata maida khan nakhabo lage. Khalua para allergic reactions bishi hoile, doctor logote sai lobi. Itu jankari di ase, Food Safety Authority, Nagaland.
2: मार्केट के बारे में क्या
3: परफॉर्मेंस था बोलो
2: नहीं तो पूछे
3: मार्केट ट्रेंड टेक
2: सुनने में आया कि
4: आज की खबर में पहले ही बोला था ब्रो
3: माय प्रेडिक्शन इज
5: आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन
3: मेरे दोस्त ने बोला
6: देवी जी की सुनो
7: अब अच्छा लग रहा है ना लगेगा ही हमने शोर को म्यूट

यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आपके एफएम ट्रैगोपैन के म्यूजिकल एक्सप्रेस एक बार फिर से तैयार है हिंदी फिल्मी गीत एसएमएस रिक्वेस्ट के साथ। और अभी हम सुनेंगे मिलकर ढेर सारे प्यारे प्यारे गीत। सो साहिबान, कदरदान और मेहरबान, अपनी कुर्सी की पेटी जो है वो कस के बांध लीजिए और दिल की कोने में छुपे लम्हों को एक बार फिर से जगा लीजिए और रेडियो का वॉल्यूम जो है वो थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, क्योंकि ये वादा है आपसे, ये फुल पैकेज है आपको हमारी तरफ से। ना कोई कमी हो हमसे, ये पूरी कोशिश है हमारी तरफ से। बस गुड वाइब्स, नो लाइस, नो फ्यूम्स एंड जस्ट ग्रेट ट्यून्स। और एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट की होगा फुल पैकेज। और दोस्तों, इस म्यूजिकल सफर की पायलट कर रही हूँ मैं, आपकी वही सीधी सारी पुरानी वाली दोस्त, पुरानी वाली यार, जो कभी आपकी तन्हाइयों में साथी थी, जो गीतों के जरिए आपसे बातें किया करती थी। थोड़ी सी हूँ फिल्मी, थोड़ी सी हूँ फन लविंग एंड फुल ऑन बॉलीवुड के लवर। जी हाँ, आपकी वही रेडियो बारी आरजे कैनी। और फिर से वापस आई हूँ आपके लिए एक ही कमिटमेंट के साथ कि हम आपको बिल्कुल भी बोर होने नहीं देंगे। एंड आप सबको तो पता ही है कि एक बार जो आपके आरजे ने कमिटमेंट कर ली तो हम अपने आप की भी नहीं सुनती। तो चलिए दोस्तों, इसी कमिटमेंट के साथ शुरू करते हैं हमारे हिंदी फिल्मी गीतों के जरिए एक प्यारी सी गीत के साथ।

आंखों ही आंखों में कभी बातें जुट जाती हैं, आंखों ही आंखों में कभी बातें हो जाती हैं, ना लफ्जों की जरूरत होती है ना आवाज सुनाई देती है, बस एक नजर मिल जाए कहीं और दिल की कहानी लिख जाती है। वेल जी हाँ दोस्तों, शुरुआत में हमने सुना है आंखों ही आंखों में फिल्म मिकी वायरस का एक बहुत ही सॉफ्ट और रोमांटिक गीत, एंड इसी के साथ शुरू कर रहे हैं हमारे आज के कार्यक्रम जो है हिंदी फिल्मी गीत SMS रिक्वेस्ट शो। जी हाँ दोस्तों, इस शो पे आप आपके मन पसंदीदा गीत रिक्वेस्ट कर सकते हैं। टाइटल लिख दीजिए गीत का, फिल्म का नाम लिख दीजिए और भेज दीजिए 9436805333 पर और मैं यहाँ से खुशी खुशी आपके गीत बजा देंगे। और अगर आपके पास कुछ डेडिकेशंस हो, कुछ मैसेज हो जो आप आपके करीबी फ्रेंड्स, आपके करीबी फैमिलीज या किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो अभी वो समय है। तो जल्दी से अपना फोन उठाइए, लिखिए आपके मैसेजेस और भेज दीजिए। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, नंबर है 9436805333। तो आप सभी

का स्वागत है आज के कार्यक्रम हमारे शाम के कार्यक्रम में जो हो रहा है एफएम ट्रैगोपैन 103 मेगाहर्ट्ज पर चल रहा है लाइव आकाशवाणी कोहिमा स्टेशन से। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं पहला रिक्वेस्ट के साथ जो हमें भेजा है हमारा दोस्त चुबा की जमीर उमा मोकोकचुंग से। उन्होंने रिक्वेस्ट किया है एयरलिफ्ट के फिल्म से एक बहुत ही प्यारा सा गीत, गीत का नाम है सोच ना सके। एंड ये गीत जो है वो डेडिकेट करना चाहते हैं सभी फीमेल आरजेस को और उनके काफी दोस्तों के नाम भी लिखा हुआ है तो पढ़ देती हूँ नाम्स। कीलन ले यप्थोमी, लॉन्ग ली लीवे, अटोली सुनीता बासुमात्री, अंजलि बासुमात्री एंड पूनम बेबी, उन लोगों के नाम भी मेंशन किया हुआ है। तो दोस्तों अगर आप सुन रहे हैं तो ये है गीत जो चुबा के जमीर ने रिक्वेस्ट किया है और डेडिकेट किया है हम सभी को। तो चलिए फिर के सुनते हैं एयरलिफ्ट फिल्म से ये प्यारा सा गीत जिसको गाया है अमाल मलिक ने। गीत का नाम है सोच ना सके।

सोच ना सके इतना कोई दिल किसी के करीब हो जाता है। सोच ना सके इतना कोई दिल किसी के करीब हो जाता है। कभी एक छोटी सी मुस्कान से हर गम हल्का सा लगने लगता है, और फिर हर दुआ में बस वही नाम रह जाता है, सोच ना सके। वेल जी हाँ दोस्तों, अभी हमने सुना है एक प्यारा सा गीत सोच ना सके, जो बहुत ही इमोशनल और रोमांटिक और हार्ट फेल्ट सा गीत है, राइट? दैट वाज फ्रॉम द फिल्म एयरलिफ्ट से था। तो चलिए आगे बढ़ते और सुनते हैं अगला ट्रैक जो हमें रिक्वेस्ट किया है हमारा दोस्त लिवी सू फ्रॉम लजामी से। ऑल द वे फ्रॉम लजामी हमारे दोस्त लिवी सू ने रिक्वेस्ट किया है लकी अली की आवाज में एक प्यारा सा गीत। गीत का नाम है ना तुम जानो ना हम। ये 2000 के फिल्म कल हो ना हो से एक बहुत ही हिट फिल्म था 2000 में, कल हो ना हो, जिसमें स्टार थे ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल। उन दोनों ने मिलकर इस फिल्म में डेब्यू दिया है एंड हिट हुआ था ये फिल्म। तो चलिए इस हिट फिल्म से सुनते हैं एक हिट गीत। गीत का नाम है ना तुम जानो ना हम, लकी अली और रामिया की आवाज में रिक्वेस्ट किया है हमारे दोस्त लिवी सू फ्रॉम लजामी से।

ना तुम जानो ना हम दिल कब कहाँ खो जाते हैं, ना तुम जानो ना हम कब दिल कहाँ खो जाते हैं, कभी एक अजनबी सा एहसास।

चलिए जल्दी से सुनते हैं अगला ट्रैक जो हमें रिक्वेस्ट किया है हमारे दोस्त कोहिमा से सुथोंग, और सुथोंग ने रिक्वेस्ट किया है एक प्यारा सा गीत, फिल्म है शिवे, शिवे का फिल्म से रिक्वेस्ट किया है जो रिलीज हुआ था 2016 में, एंड द गीत जो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, गीत का नाम है राते, और ये गीत जो है वो गाया है जैस्लिन रॉयल ने। तो चलिए मिलके सुनते हैं सुथोंग फ्रॉम कोहिमा का रिक्वेस्ट किया हुआ गीत, एक बहुत ही प्यारा रिक्वेस्ट किया है उन्होंने। तो जी हाँ, अभी हम सुनते हैं ये गीत राते फ्रॉम द फिल्म शिवे।

रातें कभी खामोश होती हैं, कभी यादों से भर जाती है। रातें कभी खामोश होती हैं, कभी यादों से भर जाती है। कुछ बातें अधूरे में भी दिल को छू कर गुजर जाती हैं, और फिर तन्हा सी धड़कने कहने लगती है रातें। वेल जी हाँ दोस्तों, वो था जैस्लिन रॉयल के आवाज में एक प्यारा सा गीत रातें, जो बहुत ही इमोशनल

इमोशनल और सोलफुल गीत था, राइट। एनीवे हम बैठे हैं अगले ट्रैक की तरफ। 30 मिनट हाथ से निकल चुका है, हमारे पास बचा है और कुछ मिनट, तो आप अभी भी हमें भेज सकते हैं आपके मैसेजेस रिक्वेस्ट गीतों के साथ 9436805333। तो इसी के साथ बैठे हैं अगले ट्रैक की तरफ जो हमें रिक्वेस्ट किया है। नाम है भाईकोन मुंडा, डिस्ट्रिक्ट चराइडो, सोनारी, असम से रिक्वेस्ट आया हुआ है ढेर सारे डेडिकेशन के साथ। तो गीत का नाम है मेरे यार, फिल्म का नाम है मेरे यार की शादी है, जो 2002 में रिलीज हुआ है। एंड जो गीत वो हमारे दोस्त सुनना चाहते हैं, गीत का नाम है एक लड़की, जिसको गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक जी ने। एंड अभी जो है हम पढ़ने वाले हैं द नेम्स जिसके लिए ये डेडिकेशन जा रहे हैं। ऑलराइट, तो नाम खंड से दुर्गेश नगनपुरी, रूपाली मुंडा, माइनू रभा, निहारिका तंती, पूजा उरांग, रमेश पत्थर, नानू पत्रा, जुगेंद्र रोंगपी, चुबाकी जमिया, अमल बसुमात्री, बीमल बसुमात्री, अंजलि बसुमात्री, शिकारी रोंगफा, फागु उरांग, कुलो मोनी बोरा, सबीना बेगम, चंद्रा टीमू, हेनरिका टीमू को डेडिकेट कर दीजिए। दैट्स व्हाट भाईकोन मुंडा ने लिखकर हमें भेजा है। तो भाईकोन मुंडा, शुक्रिया आपके मैसेज के लिए, आपके सॉन्ग के लिए और आपके डेडिकेशन के लिए। तो चलिए मिलके सुनते हैं ये प्यारा सा गीत, एक लड़की, फ्रॉम द फिल्म मेरी यार की शादी है, जिसको गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक जी ने।

मैं तेरे इश्क में खुद को भूल सकता हूँ, मैं तेरे इश्क में खुद को भूल सकता हूँ। हर धड़कन में एक नाम हो तो हर पल महक ना लगते हैं। well, जी हाँ दोस्तों, एक्सक्यूज मी, बट वो था हमारे एक प्यारा सा दोस्त ने रिक्वेस्ट किया हुआ गीत। यू नो ये गीत मुझे बहुत ही पसंद था जब मैं यू नो छोटी थी, लेकिन भूल गया था विद टाइम भूल गया था, लेकिन आज फिर रिक्वेस्ट किया और वो पुरानी यादें फिर से ताज़ा कर दिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया एक इस प्यारे से गीत के लिए। गीत था एक लड़की मेरे यार की शादी ही के फिल्म से। एनीवे समय निकलता जा रहा है और मैसेजेस जो है वो ढेर सारे मैसेजेस आया हुआ है। इन अदर वर्ड्स कहा जाए तो मैसेजेस का बोछार हो रहा है यहाँ हमारे एसएमएस गेटवे पे। तो बिना वक्त जाया किए हम सुनते हैं अगला ट्रैक जिसको रिक्वेस्ट किया है हमारे दोस्त के नाम है जुगेंदर रोंगपी, धोरम किरी रोंगपी और सोनाली इंगटीपी। उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया है सरिहजान करवी अंगलोंग असम से, और जो गीत उन्होंने रिक्वेस्ट किया है गीत का नाम है मैं तेरे इश्क में, जो फिल्म लोफर के फिल्म से है। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही पुरानी फिल्म से लोफर, एंड इस गीत को गाया है लता मंगेशकर जी ने। एंड ये गीत जो है वो डेडिकेट करना चाहते हैं अमल बसुमत्री, बाइकॉन मुंडा, रमेश पठोर, रनु पठोर और सभी सुनने वाले लिसनर्स को वो डेडिकेट करना चाहते हैं। तो वेल चलिए मिलकर सुनते हैं जोगेंद्र, धोरम मिकरी एंड सोनाली इंगटीपी के रिक्वेस्ट किया हुआ गीत मैं तेरे इश्क में फ्रॉम है लोफर से।

इश्क के राहों में कभी सुकून भी मिल जाता है, इश्क के राहों में कभी सुकून भी मिल जाता है, कभी खामोश सा एक एहसास दिल को छूकर गुजर जाता है, और फिर हर धड़कन कह उठती है मैं तेरे इश्क में। वेल जी हाँ दोस्तों, वो था लोफर की फिल्म से मैं तेरे इश्क में, एक टाइमलेस रोमांटिक गीत अभी हमने सुना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले ट्रैक की तरफ, और अभी जो है हम बजाने वाले हैं 2015 की फिल्म तमाशा से एक बहुत ही प्यारा सा गीत, जिसको गाया है अलका याग्निक जी और अरिजीत सिंह ने। गीत का नाम है अगर तुम साथ हो, और इस गीत को रिक्वेस्ट किया है।

हमारे दोस्त रोजलिन फ्रॉम कोहिमा। तो रोजलिन, चलिए मिलके सुनते हैं इस गीत को, अगर तुम साथ हो, फ्रॉम द फिल्म तमाशा, जिसको गाया है अलका याग्निक और अरिजीत सिंह ने।

रास्ते मुश्किल भी हो तो सफर अधूरा नहीं लगता। रास्ते मुश्किल भी हो तो सफर अधूरा नहीं लगता। खामोश लम्हों में भी दिल तन्हा सा नहीं लगता, जब साथ हो किसी का जो हमारे साथ चले तो। वेल जी हाँ, वो था एक बहुत ही डीपली इमोशनल गाना। गीत का नाम था अगर तुम साथ हो, फिल्म तमाशा से। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले ट्रैक की तरफ, अगले रिक्वेस्ट की तरफ। और अभी जो है हम बजाने वाले हैं वन ऑफ माय फेवरेट्स में से एक है, ये वेक अप सीट की फिल्म से, जो रिलीज हुआ था 2009 में। अगर आपने ये फिल्म ना देखा हो तो जरूर देखिएगा, बहुत ही प्यारा सा फिल्म है। और इस फिल्म में एक्टर्स जो है वो बहुत ही जबरदस्त से बढ़िया से परफॉर्मेंस देते हैं, तो जरूर देखिएगा। फिल्म का नाम है वेक अप सीट, 2009 की फिल्म है। और अभी जो गीत हम सुनने वाले हैं, गीत का नाम है इकतारा, जिसको गाया है कविता सेठ एंड वन ऑफ माय फेवरेट बॉलीवुड का लिरिसिस्ट अमिताभ भट्टाचार्य ने मिलकर गाया है ये गीत। और ये गीत जो है वो रिक्वेस्ट किया है माइकल फ्रॉम गोलाघाट असम से। तो माइकल, शुक्रिया आपके इस प्यारे से रिक्वेस्ट के लिए। तो चलिए अभी मिलकर सुनते हैं ये गीत इकतारा फ्रॉम द फिल्म वेक अप सीट।

दिल की खामोश राहों में कभी नए ख्वाब जग जाते हैं। दिल की खामोश राहों में कभी नए ख्वाब जग जाते हैं। छोटी सी एक रोशनी सी भी अंधेरे पीछे रह जाते हैं। और फिर जिंदगी धीरे से गुनगुनाती है एक तारा। वेल जी हाँ दोस्तों, वो एक सॉफ्ट और सूथिंग सा गाना जो अभी हमने सुना है वो था वेक अप सीट की फिल्म से एक तारा। तो चलिए अगले ट्रैक की तरफ बढ़ते हैं और अभी जो है हम सुनने वाले हैं नमक हलाल की फिल्म से। जी हाँ दोस्तों, 1982 की रिलीज किया गया हुआ फिल्म है ये नमक हलाल, जिसमें एक्ट्रेस थे अमिताभ बच्चन, स्मिता पटेल और शशि कपूर, उन्होंने लीड रोल निभाया है। एंड अभी गीत जो हम सुनने वाले हैं इसको गाया है आशा भोसले जी ने। गीत का नाम है जवाने जाने मन और ये गीत जो है वो रिक्वेस्ट किया है हमारे दोस्त बीरेन हंस से फ्रॉम बलीपत्थर से, विथ अ लॉट ऑफ डेडिकेशन हियर। और नाम मैं अभी बता देती हूँ, उन्होंने डेडिकेट किया है हनरिका टिमुंपी, भाईकॉन मुंडा, शिकारी रोंगफार, देबोजीत हजारिका, रमेश पाथौर, प्रेमिका तिवा, अमोल बसुमत्री, अंजलि बसुमत्री, सुनीता बसुमत्री, बिमोल बसुमत्री, जुगेंद्र रोंगपी, सोनाली इंचपी, चुभा के जामियर, रोको विलियम मेथा, उन सभी को डेडिकेट किया है हमारे दोस्त बीरेन हंसे फ्रॉम बलीपत्थर ने। तो बिना कोई वक्त जाया किए चलो मिलके सुनते हैं नमक हलाल के फिल्म से जवानी जानी मन।

साथ की कीमत वही समझे जहाँ यादें दिल में रह जाती हैं। साथ की कीमत वही समझे जहाँ यादें दिल में रह जाती हैं। कुछ रिश्ते दूर होकर भी धड़कन के पास रह जाते हैं। वेल जी हाँ दोस्तों, समय हो चुका है आपसे विदा लेने का, लेकिन विदा लेने से पहले एक आखिरी गीत हम जरूर बजाएंगे। तो हमारे लास्ट लकी विनर, हमारे आज के SMS रिक्वेस्ट शो के लिए एक बहुत ही लकी विनर चूज किया है हमने, एंड उन्होंने रिक्वेस्ट किया है द गीत मुकद्दर का सिकंदर के फिल्म से। मुकद्दर का सिकंदर के फिल्म से ये गीत का नाम है साथी रे। जी हाँ दोस्तों, एंड ये गीत जो है वो गाया है किशोर कुमार दा ने, एंड ये

एक गीत जो है वो डेडिकेट कर रहे हैं रमेश पाथोर, सुनील पंगसो, हितेंद्र दास, चुबाकी जामेर अखुजो, चोपी ब्रदर्स, जितेंद्र रोंगफी, अमाल बसुमत्री, सुनीता बसुमत्री, अंजलि बसुमत्री, बिमोल बसुमत्री, शिकारी रोंगफार, बाइकॉन मुंडा, मंधीरा एंड ऑल्सो टू ऑल द आरजीज। और हमारी जो लकी विनर है वो है रोको विलिय मेहता। तो चलिए दोस्तों, इसी गीत के साथ हमारे आज के कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ढेर सारे प्यारे प्यारे गीत रिक्वेस्ट करने के लिए। मुझे तो वाकई में बहुत मजा आया आपके गीत सुन के। ऐसे हमेशा ढेर सारे मैसेजेस, ढेर सारे प्यार, ढेर सारे गीत हमें लिखकर भेजते रहेगा रिक्वेस्ट शोज के समय। और जिन जिन के गीत वो हम अभी बजा नहीं पाए, आप निराश ना होइएगा, हम फिर लौटेंगे एसएमएस रिक्वेस्ट शोज के साथ जो हमेशा होता है एफएम ट्रैगोपैन 103 मेगाहर्ट्ज़ पे। लेकिन जैसे कि हमने कहा, आज के लिए बस इतना ही। तो जाते जाते रोको विलियम मेहता के रिक्वेस्ट किया हुआ गीत बजा के जा रहे हैं। जुड़ी रहे हमारे साथ, हम फिर मिलेंगे 9:30 बजे ढेर सारे हिंदी फिल्मी गीतों के साथ। लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। दिस हैज बीन योर आरजे कैनी, एज ऑलवेज फ्रॉम मी, सी यू, दिस विल बी ट्रैला।

आदि पुरानी वाली दोस्त, पुरानी वाली यार जो कभी आपकी तन्हाइयों में साथी थी, जो गीतों के जरिए आपसे बातें किया करती थी। जी हाँ, थोड़ी सी हूँ मैं फिल्मी, थोड़ी सी हूँ मैं फन लविंग एंड फुल ऑन बॉलीवुड का हूँ मैं लवर। जी हाँ, मैं हूँ आपके रेडियो बडी आरजे कैनी ऑन द माइक। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस कार्यक्रम को एक ही कमिटमेंट के साथ कि हम आपको बिल्कुल भी बोर होने नहीं देंगे। एंड वैसे ही आप सबको तो पता ही है कि एक बार जो हमने कमिटमेंट कर दी तो हम खुद की भी नहीं सुनती। तो चलिए दोस्तों, इसी कमिटमेंट के साथ पेश कर रही हूँ आप सभी के लिए ये पहला गीत।

कभी वक्त के साथ बातें बदल जाती हैं, कभी वक्त के साथ बातें बदल जाती हैं, पर कुछ यादें दिल में हमेशा मुस्कुराती रहती हैं, और जिंदगी धीरे से कहता है हम तुम। वेल जी हाँ दोस्तों, वो था एक प्यारा सा गीत हम तुम के फिल्म के टाइटल ट्रैक, जो अभी हमने सुना है, जिसको गाया है बाबू सुप्रियो और अलका याग्निक जी। म्यूजिक जो है वो दिया है जतिन ललित, लिरिक्स लिखा है प्रसून जोशी ने। एंड फिल्म हम तुम में सैफ अली खान और रानी मुखर्जी की नोकझोंक, उनकी फनी कॉन्वर्सेशंस और उनका स्लो बॉन्डिंग आज भी लोगों को बहुत ही पसंद आता है, आज भी लोगों को बहुत ही रिलेटेबल लगता है, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही नेचुरल वे से दर्शा गया है इस फिल्म में उन दोनों की वो केमिस्ट्री। एंड वाकई में यू नो, कभी कभी प्यार एकदम से नहीं होते हैं, राइट दोस्तों, वो धीरे धीरे दोस्ती के साथ ग्रो करता है। पहले हंसी मजाक होता है, फिर आदत बन जाती है, और फिर वही आदत दिल के बहुत करीब हो जाते हैं, राइट। एंड शायद इसी को प्यार कहता है। एनीवे, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में, जो है हिंदी फिल्म सॉन्ग्स डुएट एंड कोरस, जो अभी चल रहा है लाइव एफएम ट्रैक पैन 103 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी कोहिमा स्टेशन से। तो चलिए जारी रखते हैं हमारे इस कार्यक्रम को अगला गीत के जरिए, जो है कल हो ना हो के फिल्म से कुछ तो हुआ है।

खामोशी सी धड़कन में कभी नया एहसास जगते हैं। खामोशी सी धड़कन में कभी नया एहसास जगते हैं। बिना वजह भी कुछ पल बहुत खास लगने लगता है और दिल धीरे धीरे से कहता है कुछ तो हुआ है। वेल जी हाँ दोस्तों, वह था 2004 के फिल्म कल हो ना हो से एक प्यारा सा गीत जिसको गाया है शान और अलका याग्निक ने, कुछ तो हुआ है। शंकर एहसान लॉय के थे म्यूजिक, जावेद अख्तार ने लिखा है ये प्यारा सा बोल। और इस फिल्म में शाहरुख खान, प्रीति जिंटा एंड सैफ अली खान के फ्रेंडशिप और इमोशंस ने लोगों के दिल को बहुत ही डीपली टच किया था, इंक्लूडिंग मेरा दिल को भी। और यू नो, वैसे भी कल हो ना हो सिर्फ एक फिल्म ही नहीं थी, राइट? वो एक फीलिंग्स भी थी, हंसाती भी थी, रुलाती भी थी, और एक बात क्वाइटली हमें सिखा भी गया, दैट यू नो, जी लो जिंदगी पूरी तरह से। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी को जितना हो सके दिल से जीना चाहिए, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो। What a beautiful message, right? Anyway, दोस्तों यहाँ पे कुछ messages आया हुआ है, तो जल्दी से मैं पढ़ देती हूँ ये messages और मिलके सुनते हैं अगला track। तो यहाँ पे हमें लिखा है निमाड़ी बॉय या निमाड़ी गर्ल कहते हैं कि वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं DTH पर। तो वेल, निमाड़ी बॉय और निमाड़ी गर्ल ऐसे ही जुड़े रहे, ऐसे ही सुनते रहेगा हमारे साथ FM ट्रैगोपैन। सपा श्रृंगी रेडियो लिसनर्स ग्रुप, आप सभी का भी स्वागत है हमारे आज के शाम के कार्यक्रम में। दुर्गेश नागनपुरी, राधेश्याम नागनपुरी, वंदना भावना बिंदु गोलू।

हंसाते हो रुलाते हो अलका याग्निक और अभिजीत की आवाज में, अनन मिलन की म्यूजिक, इब्राहिम के लिरिक्स। और दोस्तों इसी के साथ आज का 9:30 से लेकर 10:30 का शो दैट इज डुएट एंड कोरस इन द फिल्म सॉन्ग्स पे यही समाप्त होता है। आज हमने ढेर सारे प्यारे प्यारे गीत सुना, उम्मीद करती हूँ आपको उतना ही पसंद आया होगा जितना कि मुझे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक क्विक रिमाइंडर कि हम फिर लौट के आएंगे कल सुबह 6:00, तो जरूर जुड़िएगा हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ FM ट्रैगोपैन 103 MHz पर। एंड दोस्तों जाते जाते बस यही कहना चाहूंगी कि हंसो जियो मुस्कुराते रहो, क्योंकि क्या पता कल होना हो। वेल, मैं हूँ आपकी RG केनी और यह था आज का लास्ट शो आकाशवाणी कोहिमा FM ट्रैगोपैन 103 MHz की तरफ से। गुड नाइट एंड एज ऑलवेज फ्रॉम मी टू यू। This will be

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।